0: अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानंतरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायां आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायां आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलं राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरी इत्यत्र राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक गठबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60-200, तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलं राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20+ राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति, तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपा दलेन पुदुचेरी इत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीय मन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरी इत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मल कुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीय मण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षक मण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते। इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालू कबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कार्यक्रम सुप्रभात के आज के संक में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना। जी श्रोताओं, आज की सुबह भी अपने आप में बहुत ही खास है, क्योंकि यही है हमारी खुशियों की शुरुआत। और हर सुबह हमें कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाती है कि जिस तरह नया दिन शुरू हुआ है, उसी तरह से हमें अपने सपनों की तरफ जाने के लिए नए कदम फिर से उठाने हैं। और सुबह की ताजगी ये एहसास दिलाती है कि पूरा दिन बहुत ही खास रहेगा, खुशियों से भरा हुआ रहेगा। इसलिए आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और नई रोशनी के साथ उम्मीदों की दुनिया में कदम रखिए।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुप्रभात में इस खूबसूरत से गीत के बाद अब हम रुख करते हैं जानकारियों की तरफ और सबसे पहले पलटेंगे इतिहास के पन्ने, बात करेंगे आज विशेष की। साल 1479 में आज ही के दिन सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी का जन्म हुआ था और महान विचारक, इतिहासकार और जर्मन अर्थशास्त्री कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ 5 मई सन 1818 में। आज ही के दिन वर्ष 1984 में फू दोर्जी ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले भारतीय बने थे। साल 2010 की अगर हम बात करें तो 5 मई के दिन आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा विकसित उच्च क्षमता वाले रॉकेट को परीक्षण उड़ान पर भेजा गया और इसमें एयर ब्रीदिंग तकनीक वाले स्क्रीमजेट इंजन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। और आज ही के दिन साल 2017 में इसरो ने दक्षिण एशिया उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था।

0: उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हो?
1: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ। इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति

0: बनी, वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की, हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
2: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
1: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
2: उमंग। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12 बजने को हैं, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत के और शान का गाया हुआ फिल्म जमीन से।

और श्रोता, इस देशभक्ति गीत के बाद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीप्रदा का गाया हुआ ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म टू स्टेट से। गीत के बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।

फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम सैनिकों के लिए श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत, और ये गीत हमने लिया है फिल्म सन ऑफ सरदार से। इस गीत को गाया है विनीत सिंह और ममता शर्मा ने, और बोल लिखे हैं मनोज यादव ने, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ ये गीत। फिल्म का नाम है जब हैरी मेट सेजल और इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीतकार हैं प्रीतम।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं दर्शन रावल और जॉनिता गांधी का गाया हुआ ये गीत फिल्म धड़क 2 से ये गीत है और इसे लिखा है गुरप्रीत सैनी ने और संगीतबद्ध किया है रोचक कोहली ने।

और कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जुबिन नौटियाल और असीस कौर को फिल्म शेरशाह में। गीतकार और संगीतकार हैं तनिष्क बागची।

कार्यक्रम सैनिकों के लिए श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। दिन के 12:30 हुए हैं, नीचे सुनिए कार्यक्रम घर परिवार।

हमारे रिश्तों में सखियों यूं ही मिठास रहे, कभी ना मिटने वाला एक एहसास रहे। कहने को छोटी सी है जिंदगी, पर बेहतरीन हो जाए जब आप सभी सखियों का साथ मिले। तो इस कार्यक्रम को सुनने वाली हमारी सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी मीनाक्षी की नमस्ते। स्वागत है सखियों आपका इस सपने कार्यक्रम में। जी हाँ, एक नया दिन, नई उम्मीदें और नई शुरुआत। तो बात करते हैं जीवन में खुश, स्वस्थ और जागरूक कैसे रहें। सखियों, जीवन में खुश, स्वस्थ और जागरूक रहना एक साथ संभव नहीं है। ये तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन खुश रहेगा, और जागरूकता दोनों को मजबूत बनाएगी। स्वस्थ रहने के लिए हमारा भोजन पौष्टिकता से भरपूर होना जरूरी है। अपनी प्लेट को हमें रंग बिरंगी बनाना है। ताज़े फल, सब्जियां, प्रोटीन को अपने आहार में शामिल करना है। नियमित सैर और योग व्यायाम करना है। साथ ही 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद हमें लेनी है। और जिस तरह का संगीत सुनना पसंद हो, उस तरह का संगीत भी हमें ज़रूर सुनना है। तो बात अगर गीत संगीत की हो रही है, तो हम भी करवाते हैं अपनी सखियों का मनोरंजन इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: गीत और विज्ञापन के बाद फिर से स्वागत है हमारी सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब हम बात करते हैं कि हम खुश रहने के लिए क्या करें। सखियों, हर किसी के जीवन में मुश्किल घड़ियां जरूर आती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम डर कर घबरा कर चुपचाप बैठ जाएं। हमें अपनी हर परिस्थिति का सामना जरूर करना है। मुश्किल समय में आईने के सामने मुस्कुराकर देखना है। परिवार, दोस्तों और उन लोगों के बीच ज़्यादा समय बिताना है जो हमें दिल से अच्छे लगते हों। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना है। इससे मदद तो दूसरों की होती है, लेकिन हमें खुद में खुशी की अनुभूति होती है। कोई अगर हमारा कुछ अच्छा करे तो उसके लिए भी हमें शुक्रगुजार रहना है और उनका आभार जरूर व्यक्त करना है। तो बातों के साथ साथ मनोरंजन भी बेहद जरूरी है। तो आइए साथ में मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: गीत और विज्ञापन के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम अपने सभी श्रोता सखियों के बीच कार्यक्रम घर परिवार में, जहां बात करते हैं कि हम जागरूक रहने के लिए क्या करें। सखियों, रोजाना 10 से 15 मिनट हमें ध्यान मुद्रा में जरूर बैठना है। इससे मन शांत रहता है, नकारात्मक विचारों से छुटकारा मिलता है और वर्तमान क्षण में जीना आसान होता है। जो समय बीत गया या जो समय आने वाला है, उसकी हमें चिंता नहीं करनी है, बल्कि वर्तमान समय में हम जो काम कर रहे हैं उसे अच्छे से करना है। खाते समय सिर्फ भोजन पर ध्यान देना है और चलते समय सिर्फ चलने पर, और किसी भी तरह का व्यर्थ में तनाव हमें नहीं लेना है। सखियों, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें खुद को सकारात्मक रखना है, खुश रखना है, आनंदित रखना है। तो चल

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 1 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। श्री मोदी ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के गया पहुंच गए हैं। उनके साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक मजबूत व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वियतनाम के राष्ट्रपति आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति तो लाम के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा करेंगे। शाम को राष्ट्रपति तो लाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज IIT मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल PhD थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
2: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के CR पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 480 अंक गिरकर 76,790 पर, जबकि निफ्टी 145 अंक लुढ़क कर 23,974 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to three Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for the peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. Mr. Modi underlined that ensuring safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz is vital for enduring regional peace, stability and global energy security. Yesterday, three Indian nationals were injured after a fire broke out at the Fujairah Petroleum Industries Zone in the UAE following a drone attack from Iran. Earlier, the Ministry of External Affairs also condemned the attack in the UAE, calling it unacceptable. In Tamil Nadu, political activity has intensified following the completion of vote counting for the assembly elections. The TVK has emerged as the single largest party in the state. Party leader Joseph Vijay paid tribute to the founder of Dravidian politics, C.N. Annadurai, in the state. Today, newly elected TVK legislators have gathered at the party headquarters in Panayur near Chennai to elect actor-turned-politician Joseph Vijay as their legislative party leader. The party is now expected to approach the governor to stake its claim to form the government in the state. BJP President Nitin Naveen, along with Delhi Chief Minister Rekha Gupta, offered prayers at the Kalibari Mandir in CR Park in New Delhi today. Later, speaking to reporters, Mr. Naveen congratulated the people of West Bengal, three other states and a union territory where assembly election results were declared yesterday. He said Prime Minister Narendra Modi is steering the nation on the path of development while preserving its culture and heritage. BJP MPs Raghav Chadha, Ashok Mittal, Sandeep Pathak and Rajendra Gupta today met President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan to express concern over the alleged misuse of state machinery by the AAP-led government in Punjab. Speaking to reporters after the meeting, Raghav Chadha accused the AAP-led Punjab government of using state machinery to target Rajya Sabha MPs who recently quit the party and joined the BJP. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has reiterated the government's commitment to building a strong research and innovation ecosystem in the country. Addressing the IIT Madras Tech Summit in New Delhi today, Mr. Pradhan emphasized the need to transform India's research ecosystem to deliver innovation-driven outcomes. He said research should not remain limited to PhD theses and academic publications, but must lead to tangible innovations that benefit society.
2: Today, with the leadership of Prime Minister Modi, government is committed to create a new ecosystem in research sector. Gone are the days where institutions will only be specific to teaching. Now priority has changed. There's a societal consensus. Institution must. Research should not be limited up to PhD thesis, citation, paper publication. Research must lead to innovation.
3: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Dr. Jaishankar was addressing the media after his meeting with Jamaican Foreign Minister Kamina Johnson-Smith and other cabinet members. The External Affairs Minister said the talks were comprehensive and substantive, covering the full spectrum of bilateral ties.
4: We reviewed the entire gamut of India-Jamaica relations. We identified new avenues for further strengthening our partnership. We have signed several important agreements, and we discussed effective implementations of MOUs, which have been recently concluded in the fields of digital transformation, cultural exchange, sports, and digital payments to ensure tangible outcomes on the ground.
3: The India Meteorological Department has forecast heavy rainfall across several parts of the country today. According to the IMD, heavy showers are likely over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Jharkhand, Odisha, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, as well as Tamil Nadu and Puducherry. Thunderstorms accompanied by lightning are also likely over parts of northern states. And with that, we end this news bulletin.
5: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।

हाँ, तो ये जो मिलन आपका और हमारा है, ये तो सदा ही रहेगा। चाहे विविध भारती परिवार का कोई भी सदस्य कहीं रहे, पर वह विविध भारती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी यात्रा की। बड़ी सुंदर सी यात्रा है, और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपने कब विविध भारती को पहली बार सुना था। तो मन में मत रखिए, ज़रूर बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कब से विविध भारती सुन रहे हैं। ऐसा मैं भी कह सकती हूँ कि मैं शायद पालने में थी तब से विविध भारती सुन रही हूँ। ऐसा आप भी कह सकते हैं, पर हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया है कि 1968 में फर्नीचर

0: भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
1: टुडे विद द लीडर्स
2: विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
3: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 168 घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सदाबहार नगमे में जिंदगी और हम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में पंडित शिव कुमार के बोल और रोशन के संगीत के साथ सजा हुआ।

0: छाया गीत
1: लग जागने।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे ये गीत आशिक फिल्म से मुकेश की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत असली नकली फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला नगमा, बात एक रात की फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज़, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब थोड़ी देर में आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सचिव आशीष सिंघमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। ये समिति इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में इस इकाई की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी ताकि इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य मरीजों को एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेजों में नैदानिक सेवाओं के दृष्टिगत मरीजों के लिए प्रतीक्षा अवधि को शून्य करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को सुझाव देने को कहा। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा प्रदेश भर में जश्न मना रही है। पार्टी के शिमला मंडल ने आज ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे। इस अवसर पर भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलने से पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। उन्होंने इस जीत के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई दी है।
1: पश्चिम बंगाल जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिला है। सबसे पहले तो मैं हमारे आदरणीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, नितिन नवीन जी, इनको बधाई देना चाहूंगा कि इनके अथक मेहनत से आज हमारा ये सपना जो है पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का वो सफल हुआ है। हमारे पार्टी के संस्थापक श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर एक सपना जो उन्होंने देखा था कि वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल का फूल खिले, आज वो सफल हुआ है, तो डेफिनेटली पूरे हिंदुस्तान में बहुत खुशी का माहौल है।
0: संजय सूद ने कहा कि कांग्रेस निराशा में कुछ भी बोल सकती है और जब जनता कांग्रेस को नकारती है तो ईवीएम व चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है।
1: कांग्रेस पार्टी निराशा में कुछ भी बोल सकती है और हमने बहुत बार देखा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है तो उन्होंने ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को हमेशा सवालों के घेरे में रखा है। अगर केरला में वो जीते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ईवीएम पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, और अगर तमिलनाडु में और आसाम में, पुंडुचेरी में और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो उनको ईवीएम पे सवाल खड़े करने हैं। ये बिल्कुल उनकी निराशाजनक राजनीति है कि खुद को मिले तो सब ठीक है और अगर जनता दूसरों पर विश्वास जिताए तो उन पे आरोप लगाए।
0: प्रदेश पुलिस ने अपनी नागरिक हितैषी वॉच एंड पेट्रोल पहल को शिमला के मॉल रोड से आगे बढ़ाते हुए मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सफलतापूर्वक विस्तारित किया है। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि आरंभ में मॉल रोड पर पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यटकों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल अब सेवा, सुलभता और जन विश्वास पर आधारित आधुनिक पुलिस का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि इस पहल के तहत सेरेमोनियल वर्दी में पुलिस कर्मियों को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तैनात किया गया है, जो पर्यटकों की सहायता, मार्गदर्शन, वरिष्ठ नागरिकों की मदद और आपात परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेंगे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने नादौन के सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। नादौन क्षेत्र के आम लोगों और अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस

0: विषय में आज डॉक्टर सिकंदर से भेंट कर इस फैसले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। सिकंदर कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विलय को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस कन्या विद्यालय में लगभग 500 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और सरकार का ये कदम क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जनहित में इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मई महीने में भी लोगों को सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई जिलों में अंधड़ बारिश व बिजली कड़कने का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद अब प्रस्तुत है हमीरपुर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है हरीश नंदा, वाचक स्वर राजकुमारी चंदेल का।
2: हमीरपुर जिला की उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने बड़सर क्षेत्र का दौरा कर वहां जारी विभिन्न विकास कार्यों का जायजा लिया। उपायुक्त ने गोविंद सागर झील के पास निर्माणाधीन जल शक्ति विभाग की सबसे बड़ी पेयजल योजना के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया और विभाग के अधिकारियों से इसके कार्य की प्रगति की जानकारी ली। एनडीबी की मदद से बनाई जा रही इस पेयजल योजना पर लगभग 137 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसके बाद उपायुक्त ने देवट सिद्ध की पेयजल योजना का निरीक्षण भी किया। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और देवट सिद्ध मंदिर परिसर और इसके आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। जिला हमीरपुर के सलासी में स्थित होटल प्रबंधन संस्थान हमीरपुर का 14वां वार्षिक समारोह उड़ान 2026 मनाया गया। मुख्य अतिथि एसपी बलवीर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ इस समारोह का शुभारंभ किया गया। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए एसपी ने बताया कि आईएचएम हमीरपुर ने बहुत कम समय में ही कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और यहां के विद्यार्थी कई बड़ी कंपनियों में कार्यरत हैं और उन्होंने देश विदेश में नाम कमाया है। इसके लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के साथ साथ संस्थान के स्टाफ के भी सदस्य बधाई के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि होटल प्रबंधन एवं आतिथ्य के क्षेत्र में युवाओं के लिए विश्व भर में अनंत संभावनाएं मौजूद हैं। युवाओं को इन संभावनाओं का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ एसपी कत्याल द्वारा जिले में 4 दिवसीय प्रवास के दौरान राशन डिपुओं, गोदामों, आटा मिलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, वृद्ध आश्रम व कई अन्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया। जिले के 4 दिवसीय दौरे की समाप्ति पर हमीरपुर सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉ एसपी कत्याल ने बताया कि इस व्यापक निरीक्षण के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं का जमीनी स्तर पर जायजा लिया है। डॉक्टर एसपी कत्याल ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी योजनाओं का क्रियान्वयन संतोषजनक पाया गया है, लेकिन उन्होंने खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और आम उपभोक्ताओं को इनकी डिलीवरी को बेहतर बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला भर में सर्विकल कैंसर, ग्रीवा का कैंसर बचाव के लिए आरंभ किए गए एचपीवी टीकाकरण अभियान में जिला हमीरपुर लगातार पहले नंबर पर चल रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रवीण चौधरी ने बताया कि जिला ने टीकाकरण में 1000 का आंकड़ा पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि जिले में 32 अस्पतालों व स्वास्थ्य केंद्रों में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के टीकाकरण के लिए 2899 लड़कियों के टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है और अभी तक इन केंद्रों में 1006 लड़कियों को ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी जिला में अभी तक 34.7% लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। जिला योजना विकास एवं 20 सूत्रीय कार्य क्रम समीक्षा समिति की बैठक हमीरपुर में भोरंज के विधायक सुरेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत सिंह, मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया और समिति के अन्य गैर सरकारी सदस्यों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर जिला में विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए विधायक सुरेश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के कारण हमीरपुर में आम लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों की गति व कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना, इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना और अन्य योजनाओं का फील्ड में व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि सभी पात्र लोग इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृत 27 मकानों में से 158 मकानों के लाभार्थियों को पहली किश्त जारी कर दी गई है। इनके अलावा वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 1886 में से 1252 मकानों का निर्माण किया जा चुका है। उपायुक्त गंधर्वा राठौर द्वारा नगर निगम हमीरपुर के लिए प्रस्तावित बड़ी विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए नगर निगम व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों साथ एक बैठक की गई। इस बैठक में मुख्यतः हमीरपुर के अंतर्राज्य बस अड्डे को भविष्य में नए निर्माणाधीन बस स्टैंड के परिसर में शिफ्ट करने और इस जगह पर सिटी सेंटर के निर्माण से संबंधित औपचारिकताओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: राजकुमारी चंदेल से आप सुन रहे थे हमीरपुर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक थे हरीश नंदा।
3: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 3:10 हुए हैं। अब आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
4: जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
5: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है। यदि समय पर उपचार ना मिले तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
4: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की। और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं, कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं, ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है।
5: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है।
4: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं। और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है, साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां रख सकते हैं ये भी बताया जाता है, जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है, घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो, धूम्रपान से बच सकते हैं और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहा है जैसे कि आपने बताया तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं, पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं, योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी।
5: और एक ज़रूरी बात है नेहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा कुछ हाँ। नहीं है भाप ले लो, पर ऐसे नहीं है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि एक दो बार ठीक है घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है, पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है कि बुखार भी आ रहा है सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं, अगर उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है, इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
4: ये तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी, कि स्वास्थ्य के प्रति

0: तक रहना अत्यंत आवश्यक है। और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफ़ी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जो चीज़ें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
1: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। और अभी हमें वक्त ज़ाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक
0: अंतराल का।

0: तो जब अच्छे अच्छे गीत सब सुनाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस खो जाओ थोड़ी देर तक. लेकिन खो जाएंगे अगर तो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे? सुना लीजिए.
1: हमें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर ध्यान रखना चाहिए नेहा. अब ये गाने जो है ना, ये घर में सुनते हैं तो मजा आता है कि भाई बैठे बैठे आग लग गई तो ठीक है. पर यहाँ हमारा लक्ष्य बिल्कुल
0: आंखों पर, आपने अपना लक्ष्य बिल्कुल लक्ष्य पे हमारी नजर होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम.
1: और ऐसी कुछ महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य में उन्हें अपार सफलता भी मिली. और आज उनकी मेहनत के कारण इतना, उसका फल इतना अच्छा है कि हम भी उनके प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं.
0: हाँ, और उन्हें याद करते हैं उनके काम के लिए. हो सकता है इसकी, इसमें कितनी स्ट्रगल रहती है, कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए, और इसके लिए ही हम उनके याद करते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही सफल नहीं हो गई हैं, उसके पीछे कितना कुछ उन्हें करना पड़ा. तो आज हम याद करें शहनाज हुसैन को.
1: और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज हुसैन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था. और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था. बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी. उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा. उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई.
0: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी, और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त किया. लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन जैसे शहरों में सौंदर्य विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया. और जब शहनाज हुसैन ने अपने कार्य की शुरुआत की थी तो उस समय बाजार में ज्यादातर रासायनिक सौंदर्य उत्पादों का बहुत प्रयोग होता था, और इनसे त्वचा को तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही था. तो उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और हर्बल उत्पादों को अपनाने का उन्होंने निर्णय लिया. और ऐसे उत्पाद उन्होंने तैयार किए जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे चंदन, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, केसर और विभिन्न जड़ी बूटियां इसमें शामिल थी, जिससे ये जो उत्पाद थे, क्योंकि ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करती थी त्वचा और बालों के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते थे. और धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके उत्पादों पर बढ़ने लगा और उन्होंने शहनाज हर्बल्स की स्थापना की.
1: और शहनाज हुसैन ने अपने घर से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था. धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की. ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है. उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है. और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं. ये भारत के लिए गर्व की बात है. एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया. ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है. और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया.
0: बिल्कुल. तो कई बार ऐसा हम कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है. उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है, और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं. तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी, और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं. और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो. लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है. तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया. शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पे उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा. आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया. फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई. और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
1: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण. पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए. भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके अतिरिक्त उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया.
0: बिल्कुल. उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं. साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी, और रासायनिक उत्पादों की बजाय

0: इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है? शहनाज हुसैन।
1: शहनाज हुसैन जी, तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: और अब गाना सुनना चाहिए।
0: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो ऐसे गोरे गोरी बातें कर रहे थे हम
1: गोरे होने की बातें
0: हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए रंग जिसको जैसे जो मिलता है उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार कर लेते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाए जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
1: यानी कि अगर सर्दियों का मौसम है तो हमारी मॉइस्चराइजर ये घर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा ले, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं उससे भी सॉफ्ट हो जाती है स्किन। और बहुत सारी महिलाओं को है ना जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई हमारा रंग तो सांवला है तो क्या हुआ, सांवले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है।
0: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुहासे ज्यादा निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुहासे, तो इस तरह की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना।
1: और अब हमें ब्रेक
0: लेना चाहिए,
1: तो लेते हैं ब्रेक
0: जी।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली, और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स, तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी दाल बराबर।
1: तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी है उन्होंने कि क्या क्या अर्थ होता है।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले तब ये कहावत कही जा सकती है। अक्सर सबके घर में पतिदेव का यही हाल होता है, मुझको छोड़कर। आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है ना।
1: हाँ, कमेंट्स है ना बाहर ही कमेंट सारा।
0: हाँ,
1: तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है नेहा की घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती है उनकी। बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए। अब जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी ज़बरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग से आती है, तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीज़ें जो अपने पास में है उन्हें हम इग्नोर कर बैठते हैं।
1: वही चीज़ जैसे हमने अभी कहा था कि हम अपने पास जो चीजें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं, वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीजों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी, जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीजों को देखते रहना और अपने पास जो चीजें हैं उसका महत्व ना समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल

0: सार्थक कहता करता है कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं है, इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
1: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं और सामने हम टीवी में बैठे हैं कोई बच्चे गा रहे हैं तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। अगर हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं संवारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें तो वो भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते हैं।
0: तो कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है तो हम कह रहे हैं देखो ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी उम्र का है कितना अच्छा गा रहा है। तो अब उसने बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो
1: तो बैठ जाओ पढ़ने,
0: लेकिन हम तारीफ उसकी कर रहे हैं तो वो भी हीन भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं, दुखती रख पर हमारे हाथ रख दिया ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूँ, जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वही साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए हमारी शिकायत हमसे ही हो रही है यहाँ तो
1: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना दिया
0: हाँ हम तो रोज आते हैं, हम लोग घर के ही हैं हम तो कोई ऐसा आप हमसे से मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों को
1: एक साथी ने लिखा है घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो तो भी घर का ही है, वही बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की रोटी जो है वो और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती है,
0: हाँ, स्वाद बढ़ जाता है और हमारे को साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत है कि वो सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती है,
1: तो फिर इंतजार करती है गृहिणी है कि कब मेहमान आएंगे तभी नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे।
0: अब ऐसा लगे गृहिणी से ज्यादा तो घर के लोग उसका ध्यान रखते हैं कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
1: पर अब गाना सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

कल तो हम और थे, आज हम और हैं, क्या से क्या हो गया काबिले गौर है। कल तो हम और थे, आज हम और हैं, क्या से क्या

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना, जब
0: हाँ
1: मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ, तो बच्चे
0: हाँ
1: कहते हैं कि नहीं हम डाइटिंग पे हैं, हम नहीं खाएंगे, कितना घी डाला है उसमें
0: हाँ
1: और कितना सारा बटर डाला है, कितना सारा उसमें शक्कर या गुड़ डाला है, तो हम नहीं खाएंगे। और फिर बस घर में बस हम उबला हुआ खाएंगे, उबला हुआ उबली हुई सब्जी खाएंगे,
0: हाँ
1: उबला हुआ खाना खाएंगे, और थोड़ी देर बाद ये देखते हैं कि फोटो आ रहे हैं कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये
0: कोल्ड्रिंक्स पी
1: घर
0: रहे
1: घर की कहानी
0: हैं। हाँ घर की कहानी तो होगी क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे,
1: हाँ
0: अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा मजाल आपके टिफिन को लेके जाता है हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती हैं, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
1: पर वो बच्चों को ऐसा
0: हाँ
1: लगता है ना कि घी से हमारा वजन बढ़
0: मोटे हो
1: जाएगा है।
0: जाएंगे, हाँ बर्गर से वो पतले होते जाते हैं। तो कहते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर सारी बातें कहते हैं कि एक दिन पिज्जा
1: हाँ,
0: खाने वाले, जो
1: यानी
0: कि वो
1: उस
0: पूरा
1: दिन,
0: एक हफ्ते का
1: हाँ
0: सब
1: हाँ
0: निक्की नक्की हो जाता
1: यानी
0: सारी
1: हम
0: चीजें।
1: एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं कि
0: हाँ
1: एक दिन हम बाहर का खा लेंगे पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें,
0: हाँ
1: आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है
0: हाँ
1: कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
0: और
1: मुर्गी दाल।
0: पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई
1: हाँ
0: जिसको जो पसंद है वो
1: हाँ
0: सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से। अच्छा ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी
1: हाँ
0: बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही है कि नहीं आकर्षक पैकिंग में जब बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीज़ें, कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो इस तरह से अगर बोल दिया जाता है, तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
1: और है ना क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय में ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है ठंडा हो
0: हाँ
1: जाता है, पर बच्चों को वही लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा,
0: हाँ
1: पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है, और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो बाहर
0: हाँ
1: घर में हम कहेंगे कि हमें मैदानी खाना है और बाहर जाके हम मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं, और ना
0: हाँ
1: जाने ऐसी कितनी चीज़ें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है।
0: बिल्कुल। और आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है, और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से, त्यौहार होते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से, भी गर्मी है तो ये चीज़ तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीज़ें बनेंगी,
1: गोंद के लड्डू
0: हाँ
1: बनेंगे।
0: लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
1: यानी हमारे
0: तो हाँ
1: शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस
0: हाँ
1: हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं,
0: हाँ
1: है ना, कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी, यानी सांस्कृतिक महत्व भी है उसका कि वो फसल उगती है नई नई तो हमारे
0: हाँ
1: शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते
0: खाने
1: हैं
0: चाहिए।
1: बनाए जाते हैं।
0: हाँ तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीज़ें भी मिलती, बाहर तो सारी चीज़ें एक ही मिल रही है, हमेशा वो मिल रही है, आप जब चाहें वहाँ जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहाँ जाके कुछ भी खा सकते हैं, गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो
1: हाँ,
0: रस तो नहीं है ना
1: फ्रोजन होता है
0: उसमें।
1: वो। हाँ,
0: हाँ
1: और फिर उसमें जो विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं, साथ
0: हाँ
1: में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं,
0: जी
1: पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे, पर हम बाहर
0: सिर्फ समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है।
1: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा
0: जी
1: तो वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
0: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट करते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज़्यादा खाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस ये कटोरी में दाल डाली और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद। हो सकता है इस वजह से, और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीज़ों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर हम बदलेंगे,
1: उसे भी आकर्षक बना के अगर हाँ, परोसे ना, तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते हैं।
0: बिल्कुल, तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
1: और अब गाना सुन ले।
0: हाँ
1: सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही ऐसा।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था, बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नेहा कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्यौहार के दिन कैसे आते, किसी का होली पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी पे, तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्यौहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर देते थे
0: तो एक साथ हो जाती मिठाइयाँ बन जाती एक साथ, ज़्यादा मिठाइयाँ बन जाती होंगी।
1: तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ करता था, आज जब हम अक्सर केक लाते तो उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया, पार्टी की जगह ऐसे ही अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मज़ा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आधा आ जाते थे, हमें कुछ 5-5, 10 रुपए वाले जो गेम या टॉयज आते थे वे दिया करते थे।

0: भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है, खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहां पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें हैं कि नया कपड़ा सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना। जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी, उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना, पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे, और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजाकर बनाई जाती थी, और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते। शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सल जैसे पारंपरिक खेल, जहाँ बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था, और गिफ्ट्स की सादगी उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
0: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसे कह रहे हैं, इसके चलते कई उद्योग पनप गए। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लड़कों का खूब जन्मदिन मनता था, विधि विधान पूजा पाठ करते थे, गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे, माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते, और जिसका जन्मदिन होता है सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता, घर में खीर पूड़ी या बच्चे के पसंद का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है, समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे, बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे, उनके मित्र भी वैसे ही थे, आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है, वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
0: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे, लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते किसी को नहीं देते थे, तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे, बिना किसी गिफ्ट के मासूमियत भरी थी, दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी, और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
0: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता, जिसकी फोटो डेवलप होकर कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे, ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी, पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम अपनापन ज्यादा था, आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में भले ही सेलिब्रेशन शानदार हो गए हों, लेकिन वो पुरानी सादगी और दिल से दी गई दुआएं अब कम ही मिलती है।
1: तो पुराने वो दिन हमें याद करके बहुत सुकून मिलता है, और एक गाना सुन के भी हमें सुकून मिलता है। सुनते हैं गीत।

0: तो आधी रात तो नहीं हुई है, लेकिन जाने का समय जरूर हो गया है।
1: तो लेते हैं इजाजत आप सभी को, सोनाली पाठक
0: और नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोली और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार, जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच

0: समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतने ही मायने रखती है जितने कि उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफ़र कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी ज़बानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेलुलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
1: रविराज जी, आपने मेरी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा कर दी है।
0: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
1: उसमें भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
0: क्या बात है,
1: खास कोई बात शुरू करनी हो
0: तो हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरी को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
1: उस हरी कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफ़र, तो ये जो सफ़र है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
0: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और हम आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज़्यादा और ज़्यादा।
1: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज़्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को के दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी का ये सफ़र अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखना का शौक़ था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे एक न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरी कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी।
0: जैसे बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों, आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह, अगर हरी के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरी?
1: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज़्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में मैं जब बम्बई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर का जो हरी कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूँ फिल्मों के द्वारा वो दूँ। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया। मुझे तो इतना ही याद है, बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप, से 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली। और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज़ हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

0: मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, ख़ास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है।
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू, उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा था, मैं कह रहा हूँ मामा ये सूरज है, वो कहते ना ये दिलीप कुमार है, मैं कहूँ ये सूरज है वो वाला जो मर गया था, वो बोले नहीं देख पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है, तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ मैं कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा, फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियाँ ज़मीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: मनोज जी, आपने बताया आपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: चूँकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेज नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गाँव पड़ता था नांगलोई, वहाँ डाल दिया। वहाँ हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था, तो कुछ चार एक महीने वहाँ पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्ज़ी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूँ, लेकिन मैं कब फेल हुआ, कब पास हुआ, कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए, पेपर कैसा हुआ, ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बम्बई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है, ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माय ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
0: क्या बात है।
1: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है, ब्लंडर नहीं कर सकता। बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
0: अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है और आपने जैसा कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, तो अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था, पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफ़ी खस्ता थी। मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए मिस्टर टकसाली साहब। वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत, ये मैं ट्राई करूँ। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा हो के ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी उस पर बहुत भीड़ थी, मैं वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया और 2 महीने मैंने काम किया और बटाला से टकसाली साहब ने ख़त लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर नहीं भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4-व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फ़ोटो भी खिंचवाओ, कमीज़ भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।
0: जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही।
1: मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आँखों ही आँखों में कहते हैं ना बात हो गई, जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, रीत अनोखी, बांध चलें और नैन ना देखें, कब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ ज़रूर है।
0: बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा?
1: 15-16।
0: वाह, और पहली नज़र का प्यार?
1: लेकिन बातचीत करने में एक साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे।
0: और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए।
1: फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ, वो उनके यहाँ चले गए, तो एक मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला।
0: क्या बात है, वाह।
1: फिर वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है, हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार ये काम किया।
0: और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और
1: ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पांव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियाँ की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है।
0: कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको?
1: आपने कहा तो मुझे एकदम अपने एक गाने का ध्यान आया, जीवन चलने का नाम। जीवन

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी। अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे।
1: बात ये कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएँ हैं या जो रुचि है पड़ी, वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन्ड पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी। और पिताजी नढ़ाल थे, दीवानों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ, 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा ते देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया। ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो, ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे।
0: देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था,
1: वो बीज था। हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लों शाहनवाज, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी। वो एक बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं। लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का, वो 15 अगस्त को पड़ा,
0: देश की आज़ादी के दिन ही। तकरीबन 13 साल के रहे आप।
1: उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टक्का मांगा। मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे। हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि ये आदमी पानी के पैसे मांग रहा है। कहते यार पानी, हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आज़ादी के लिए, तो पानी के 2 पैसों को रो रहा है, हम तो दरिया छोड़ आए।
2: विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्यूलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार।
0: मनोज जी, हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ, और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की
1: जी।
0: तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
1: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा। हो सकता है ये जगह, ये मकाम जहाँ मैं पहुँचाऊँ आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है। कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है, तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग, कोरा दिल, उस पर दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूँगा, ये तो हुआ। लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जाके दिलीप कुमार साहब को साइन करूँगा और वो सेट पे मेरे लिखे हुए डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे। इतना नहीं सोचा था। इतना कुछ हो गया, इसके आगे मैं भगवान से मांगूं तो इतने मांग सकता हूँ कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं।
0: ज़बरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो?
1: उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पर फिल्म आया गया था, कैसी हसीन ये बहारों की रात।

0: श्रोताओं, इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना।
1: ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो यही नाम रखूँगा।
0: जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का ज़बरदस्त प्रभाव रहा है, आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है, तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने जान करके इसको लिया
1: है? नहीं, ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मतलब ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूँ।

0: एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी ज़ाती ज़िंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड स्लो ऐसे, तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था, उसमें दो दिलीप कुमार नहीं थे।
1: बिल्कुल सही।
0: क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए।
1: तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है, बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने कि एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को, एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो वो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं।
0: जहाँ तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते, तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करेक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है, मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
1: मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से, ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा, और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया?
0: लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ,
1: शुरुआती दौर में आपने बताया था।
0: बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे दोस्त हैं केवल बी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार मैं थक गया हूँ फ़ोटोज़ खींच खींच के और ऑफिसेज में जाके कि इसकी फ़ोटो छापो, उसकी फ़ोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो, जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए, उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं, मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले दो फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं हैं, ये तू जोखिम लेगा? कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना है तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे सहयोगी थे मेरे एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओ पी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूज़िक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे। तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा, तो शंकर जयकिशन का म्यूज़िक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओ पी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार एक दो गाने ले लेंगे उनसे। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें, कहता उन्होंने कभी म्यूज़िक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता? मैं कहा मैं जानता हूँ, ये बड़ापन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने दो दिन मांगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूज़िक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूज़िक दिया, म्यूज़िक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूँकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर दो यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा, मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन

नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर उस नजर

फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे। वो 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ। बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे। तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए, मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नज़रों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पर फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बाल पेन ले दो, मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में उपकार लिखी गई थी।

0: मैंने स्क्रिप्ट में, मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए।
1: हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं।
0: नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं, कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है, अगर इसको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूँ, और अगर गलत है चीज़ जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है।
1: यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे।
2: घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं, योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, दो चीज़ें इनकी फेवरेट है।
1: और स्वभाव किस तरीके का है, कि जिस तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर ख़ास तौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं?
2: शांति से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है।
0: कोई सुविधा ज़िंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूज़िक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है।
1: शशि जी, आप अपने ज़माने में ज़बरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं, कभी आपको ख़ुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? ख़ासतौर से आप, हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है।
2: काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लगती है हमें।
1: दूसरी चीज़ ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज़ पर उतारा?
2: मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे हमेशा, अब्रॉड में ट्रांसफ़र हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया।

0: मनोज जी, एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक ज़बरदस्त या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी।
1: प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा।
0: ये बिल्कुल हकीकत है।
1: लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार, उस पर स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कस्में वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब, ये सब कहते थे अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुँह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे, वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था।
0: वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए।
1: बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है, तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या।

सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: धाराएं तीन, विचार स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5 हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
3: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल का नेते के चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पुदुचेरी में मनादीपेट में निर्वाचित विधायक ए नमस्शिवम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। आज पार्टी विधायकों की परामर्श बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सावरगी ने इस संबंध में जानकारी दी।
4: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
3: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में दूरसंचार अनुसंधान मानकीकरण और नवाचार समिति की हितधारक सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कैपिटिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स CPR के प्रमुख उपयोगों और उनके अनुप्रयोग

0: लोगों पर चर्चा हुई। ये नेटवर्क नागरिकों और उद्यमों दोनों के लिए अधिक विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान कर नवाचार को बढ़ावा और डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में तमिलनाडु, पुदुचेरी और गुजरात में राजमार्ग रखरखाव के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों की मजबूती, सुरक्षा मानकों और यात्रा को बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। श्री गडकरी ने कहा कि भारतीय अवसंरचना विकास में न केवल विस्तार पर बल्कि दीर्घकालिक स्थिरता पर भी बल दिया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और जमैका के बीच विकास सहयोग साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है। जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और उनके अन्य मंत्रियों के साथ बैठक के बाद श्री जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही। दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें स्थान पर है। ये मैच दोनों टीमों के लिए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में आज ऐसी ही स्थिति रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी आज तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Political activities have intensified for government formation in West Bengal, Tamil Nadu and Kerala after declaration of assembly polls results. Following the BJP's sweeping victory in West Bengal assembly elections, preparations are in full swing for the formation of the new government and the oath-taking ceremony in the state. The new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah are expected to attend the ceremony. In Tamil Nadu, actor-turned-politician C. Joseph Vijay's Tamaraga Vetrikaragam, or TVK, has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur, near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. In Kerala, the Congress-led UDF is holding informal discussions on the formation of a government. The BJP has appointed senior party leader and union minister Amit Shah as central observer for the election of the leader of the legislative party in West Bengal. Odisha Chief Minister Mohan Charan Manjhi has been appointed as the central co-observer in the state. Union Minister J.P. Nadda has been appointed as central observer for the election of the leader of the legislative party in Assam. Haryana Chief Minister Naib Singh Saini has been appointed as the central co-observer in the state. These names were approved by the BJP Parliamentary Board for central observers. The Bihar State Cabinet under the leadership of Chief Minister Samrat Chaudhary is set to undergo a significant expansion on 7th of May. State

चंद्राणी मुखर्जी और सुरेश वाडेकर की मिली जुली आवाजों में आइए अब सुनते हैं दुर्गा माँ फिल्म से ये भजन आपके रेडियो सेट्स पर।

लता मंगेशकर व साथियों के गाए इसी भजन के साथ आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 5:30 और 40 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

हेलो, गुड इवनिंग युवा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने कार्यक्रम युवा मंच में। जी हाँ, कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं और चलिए आगाज़ करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

कार्यक्रम युवा मंच में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त रेनु मनकोटिया। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं युवा दोस्तों, जो ना केवल हमारे वर्तमान बल्कि हमारे भविष्य से भी जुड़ा है। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका और जिम्मेदारी। युवा दोस्तों, आज का युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान का भी सशक्त स्तंभ है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण पर्यावरण पर संकट गहराता जा रहा है। ऐसे में युवाओं का कर्तव्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या वास्तव में हम युवा पर्यावरण को बचाने में कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं युवा दोस्तों। जैसे पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पानी और बिजली की बचत करना। लेकिन आजकल लोग जागरूक तो हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं दिखता? जागरूकता के साथ साथ कार्यवाही ही भी जरूरी है युवा दोस्तों। केवल जानना ही नहीं बल्कि उस पर अमल करना ही सच्ची जिम्मेदारी है।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: युवा मंच कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं के दायित्व की। जी हाँ, जागरूकता के साथ साथ कार्यवाही भी जरूरी होती है युवा दोस्तों। केवल जानना ही नहीं बल्कि उस पर अमल करना भी सच्ची जिम्मेदारी है। युवाओं को चाहिए कि वे समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाएं, स्कूलों कॉलेजों में अभियान चलाएं, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें, स्वच्छता और हरित जीवन शैली को अपनाएं।

क्या हम मिलकर कोई विशेष पहल कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। एक युवा, एक पेड़ जैसे अभियान शुरू किए जा सकते हैं। हर युवा साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और उसकी देखभाल भी करे। दोस्तों, अगर आज हमने प्रकृति की रक्षा नहीं की तो आने वाली पीढ़ियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक कदम बढ़ाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पर्यावरण की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है और इस कर्तव्य को निभाने में युवा सबसे आगे रहें।

और हमारे युवा दोस्तों का। जी हाँ, आज हम बहुत ही एक खास दिन मना रहे हैं। जी हाँ, विश्व अस्थमा दिवस। युवा दोस्तों, हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसके सही उपचार के बारे में जानकारी देना। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है। ये समस्या तब होती है जब हमारे फेफड़ों के वायु मार्ग संकुचित हो जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। इसके मुख्य लक्षण हैं बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न, सीटी जैसी आवाज़ के साथ सांस लेना। क्या अस्थमा सिर्फ बुजुर्गों को ही होता है, ये सवाल हमारे जहन में आता है। तो नहीं, अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी को। इसके अब क्या कारण होते हैं? धूल, धुआं, प्रदूषण, एलर्जी, ठंडी हवा और कभी कभी तनाव भी अस्थमा को बढ़ा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अस्थमा को सही देखभाल और उपचार से नियंत्रित किया जा सकता है। युवा दोस्तों, डॉक्टर की सलाह से नियमित दवा लें, इनहेलर का सही उपयोग करें, धूल और धुएं से बचें, स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में रहें। हम युवा इस दिन क्या कर सकते हैं? जी, ये भी एक सवाल है। बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आसपास के लोगों को अस्थमा के बारे में जागरूक करें, प्रदूषण कम करने के लिए प्रयास करें, पौधारोपण करें और स्वच्छता का ध्यान रखें। दोस्तों, अस्थमा से घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे समझने और संभालने की ज़रूरत है। आइए इस विश्व अस्थमा दिवस पर हम सभी मिलकर एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाने का संकल्प लें। सही जानकारी, समय पर उपचार और जागरूकता, यही है अस्थमा से बचाव का सबसे बड़ा उपाय। तो इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। चलते चलते हम आपको बता दें, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता जितेंद्र पॉल सिंह और हमें तकनीकी सहयोग मिला विपिन कुमार से। तो युवा दोस्तों, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलेंगे फिर इसी दिन इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:55 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी, साथ ही कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी भी।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:06 पर सदाबहार संगीत प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:30 पर हास्य नाटिका नोखे लोग नोखियां गल्ला प्रसारित किया जाएगा। शाम 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम किसान वाणी। इसमें आज बातचीत का विषय है कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीकों का उपयोग। साथ ही होंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, भेंट वार्ता और आपके मनोरंजन के लिए कुछ लोकगीत। रात्रि 8:00 समय है विविध संगीत के कार्यक्रम सबरस का और रात्रि 8:30 पर देश गान सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम एक ही कलाकार पेश किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में आप सुनिएगा गायक मुकेश

के गाय कुछ चुनिंदा गीत। रात्रि 9:30 से रात्रि 10:30 तक लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतांदी प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 10:30 पर। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। कल सुबह 7:10 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज विशेष के साथ बात होगी मोतीलाल नेहरू की जयंती, छत्रपति शाहू की पुण्यतिथि, रमणीक स्थल संगला घाटी और गिद्ध पक्षी के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। महिलाओं के कार्यक्रम घर परिवार में जानकारी का विषय रहेगा अपनी बेटियों को सिखाएं आत्मरक्षा के गुण, बनाएं उन्हें आत्मनिर्भर। घरेलू जानकारियों में डिजिटल घड़ी के बारे में जानकारी साझा की जाएगी और खान पान में क्यों बनाने की विधि साझा की जाएगी। ये थी विस्तृत जानकारी हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:59 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी शाम 6:00 आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में शहरी निकायों और पंचायत चुनाव को लेकर गतिविधियां तेज हो रही हैं। प्रदेश के 51 शहरी निकायों में चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। शहरी निकायों में 449 पार्षद पदों के लिए 1426 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उम्मीदवार 6 मई तक नाम वापस ले सकेंगे और इसी दिन चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होगा। इस बीच तीन चरणों में होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 7 मई से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 8 और 11 मई को भी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। सोलन नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने आज नगर निगम चुनाव को लेकर सोलन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति पर गहन चर्चा की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने सोलन में पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया और नगर निगम क्षेत्र में विकास संबंधी मुद्दों व समस्याओं पर मंथन किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।
1: उम्मीद है कि सोलन नगर निगम की जनता कांग्रेस पार्टी को एक बार दोबारा से जो है बहुमत देगी और यहाँ की समस्याओं को हम हल करेंगे। तो हमारी इस सरकार की मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारी उपलब्धियां हैं जिनको हम और सारे कार्यकर्ता जनता तक ले जाएंगे और हमें उम्मीद है निश्चित रूप में हम बहुमत से नगर निगम को बनाएंगे।
0: हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित की गई। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समिति प्रणाली लोकतंत्र में मिनी सदन की भूमिका निभाती है, जहां विस्तृत विचार विमर्श और सूक्ष्म परीक्षण संभव होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक विधायिका का अभिन्न अंग है और ये संसद और विधानमंडलों के कार्यों को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाती है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान कई सुझाव भी दिए और कहा कि समितियों की सिफारिशों को अधिक प्रभावी व बाध्यकारी स्वरूप दिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद की 543 सीटों के आधार पर लागू करने की केंद्र से मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है।
2: आरक्षण कानून पास है, लागू का दबाव है, लेकिन ये भाजपा सरकार को झुकाने के लिए हमें मालूम है आधी आबादी को सड़कों पर आकर चलो संसद के नारे के साथ हम जुलाई के मानसून सत्र में 10 लाख बहनों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नाम उनके पते पर 10 लाख महिलाएं पोस्ट कार्ड जुलाई सत्र से पहले पहुंचाएंगी।
0: अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर टैलेंट हंट कर महिलाओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। प्रदेश भाजपा सचिव वंदना योगी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना जैसे गंभीर विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संविधान संशोधन और परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। वंदना योगी ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न ही ठोस मुद्दे हैं, इसलिए वो जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाओं को 33% से अधिक भागीदारी देता है। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वंदना योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद भाजपा प्रदेश भर में जश्न मना रही है। पार्टी के शिमला मंडल ने आज ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते हुए लड्डू बांटे। इस अवसर पर भाजपा नेता संजय सूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कमल का फूल खिलने से पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना पूरा हुआ है। संजय सूद ने कहा कि कांग्रेस निराशा में कुछ भी बोल सकती है और जब जनता कांग्रेस को नकारती है तो ईवीएम व चुनाव आयोग पर सवाल उठाती है।
3: कांग्रेस पार्टी निराशा में कुछ भी बोल सकती है और हमने बहुत बार देखा है कि जब जब कांग्रेस पार्टी को जनता ने नकारा है तो उन्होंने ईवीएम को और इलेक्शन कमीशन को हमेशा सवालों के घेरे में रखा है। अगर केरला में वो जीते हैं तो उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ईवीएम पर भी और इलेक्शन कमीशन पर भी, और अगर तमिलनाडु में और आसाम में पुंडुचेरी में और वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है तो उनको ईवीएम पे सवाल खड़े करने हैं। ये बिल्कुल उनकी निराशाजनक राजनीति है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:06 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार संगीत। सदाबहार संगीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रेणु मनकोटिया का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और बोल है आनंद

ये संगीत है आनंद मिलिंद का और गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ का गाया ये गीत सदा सुहागन फिल्म से आपके रेडियो सेट्स पर। सदाबहार संगीत अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनुवन कोटिया के साथ। यूं ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए, संग ही संग गुनगुनाते रहिए।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बोल हैं समीर के। बीवी हो तो ऐसी फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल ने।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार संगीत, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:30 और 20 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मोजा ग्राइंडियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्राइंदियां सुनने वाले सारे ही श्रोतियां दा अहां अपने इस ट्याले पर स्वागत करदे ने। कने श्रोताओ ट्याले पर मैं तुहां दा लोका पाऊ कने मिंजो कने पंच जी
1: जी तां कार्यक्रम च सारे दा ही स्वागत है। और अज है मंगलवार और मंगलवार दे दिन जिहड़ा सा अहां खास कार्यक्रम पहाड़ी नाटक जिहड़ा सा लेके आउंदे ने। और अज दा जिहड़ा विषय इस नाटक दा सह है वोट अहां जिहड़ा सा जरूर करना है ना, तां ओह सारे सुणदे ने नाटक
0: जी।

0: हेलो हेलो सुम्मा दा तिजो चंपा ओमिये हेलो
1: हेलो हेलो हाँ बोल शांति क्या होया
0: ओमिये चंपा तोड़ी आई है मेरे घरे हो आई नी मिला दा मिये सारा मुल्क तोपी छड़िया नी मिला दा मिये गुआची या क्या करना मैं आओ आई मिये चट
1: क्या गुआचे तेरा क्या गुआचा
0: ओ मिये बड़ा भरी जरूरी मिये तिस बात जीता मेरा बिल्कुल काम नहीं होना कने केसरो ही भी ले आया केसरो आ जाई के
1: ओ केसरो मेरे बखे खड़ोती हो हौसला रख हौसला आहा दो जनिया ऊणी आईया दस दस गुआचे क्या है
0: तोले हो हम ये दोनों जनिया जाटी होवा
1: हेलो हेलो शांति ए ले फोन ही कटीता इसे तो उम्र दी गाली है जाली दिखा ताली पूरी गल तो कदी नहीं दस दिए
2: हाय बो चंपा गलाए के तिन्ना गोरा ने सुने ना तेउनिया दस मिये दस मिंजो भी के ही होवा दा
1: पता तिहा गलाया ना कुछ की गुआची गया कने छोड़ आवा कने तिस बाजी तिहा दा गुजारा नहीं है पता नहीं अड़िए उन क्या गुआचे होगा
2: ओहो बच्ची मिंजो तो बुरा दे आ महसूस हो दा
1: क्या तिजो अब शगुन हो दा
2: ना ना तेरा तो ध्यान ही पुठे पाहे जांदा
1: ना तो तेरा तो सीधे पास ही जा दा मिंजो लगा दा ना तिहा दी गा गुआची गी होनी नहीं तो बच्ची गुआची होनी तिजो क्या लगा दा सैबी नहीं गुआची होंगी तो मिंजो लगा दा शेरू सज भौंकदा नहीं है डोली चली गई होना कुदकी सह गुआचे होना उन क्या गुआचे होगा
2: मुंड तेरा ठोरिया तिन्ना गलाया नहीं कि मेरा गुजारा नहीं होना तिस बाजी तिन्ना मिये फिंडुए दा पापा गुआई सड़िया कुदकी इन्ना गाई पिछे मिये पूरा टब्बर ही गुआई देने करेड़ की
1: आहा दूई दा इकलौता मित्र पाऊ मिये से गुआची है चल चल तोड़ कर ता तोपी आनिया ने ताई से बड़ी भारी दुखी थी चल
2: जड़ी ये मेरी किस्मत भी है अड़ाई नहीं है आई अपने कम में ही कने उन जाना पोना अगले कम में चल चल तू
1: सेलियां कई होनिया कम में ताई होनिया चल सुख दुख चुकु नहीं पूछना ती है यो आहा ही पूछना ना

0: शांति, ओ शांति, ये
1: ओ शांति क्या हुआ? अच्छे मिये साढ़ा तक काल जाए बहन ता ज्यादा करे देख मिये के सरोजता सा नहीं आवा दा है।
0: हाय नहीं
1: शांति छोड़ हौसला रख हौसला।
0: हाय नहीं बो, हाय नहीं सा नहीं आवा दा
1: हौसला रख हौसला। शांति ए मिये कुता है तू क्या गुआचिया कने?
0: ओ मिये कुता ते आई रही है बकलोंदियां इना त मेरा बीपी आई करी छड़ना
1: मित्र
0: भाव नी जानदा कुछ भी आई ने पाओ पाओ लगाई पाया। मैं नहीं सुझदी तुहां जो मेरी तकलीफ नहीं सुझदी तुहां जो
1: तेरी तकलीफा दिखी के ता आईया मिये हां जो क्या पता था साड़ा पाऊ गवाईना थे।
0: ओ मिये कुछ नहीं होया इस खलारे दिखा दिए तो हां पूरे ट्रंक तड़ोपी चढ़े मिये पेटी भी खोली मारी लमारी भी खोली बेड बॉक्स भी खोले मिये कुथू नहीं मिला था कुथी नहीं मिला था मिये आई ने तुहां हेल्प तक ता करानी मेरे मेरे दिमाग के दा पू करी ता तुहां फिंडो ता नहीं है तेरा कुत किलू की बैठिया। ओ तुहांदा पाओ भी ठीक है ना कने फींडू भी ठीक है मैं नहीं है ठीक गुआची है मिये कुथी नहीं मिला दा कुथी नहीं मिला दा
1: कुसी ट्रंके च नहीं मिला दा तिजो। हे भगवान है क्या गुआचे आ
0: मी सै गुआची सै नहीं हुंदा बड़ा जरूरी हुंदा सै लौंग त नहीं गुआची है तेरा कुसी कुछ नहीं मिला ना तो तिसदा लौंग ही हुंदा गुआचिया।
1: ओहो शांति तू पहले बोल दी तमिये अहां निगाह मार दी मार दी आउनिया कन्ने गीत भी गानिया है ना निगाह मार दा आई वे मेरा लौंग वाचा। मिये रस्ते च मिली आना संजो
0: और सदा इसे तो अपने हो इन बे के गीत गाने ने कुर्सी दे इसे तू बैठे हो
1: तो तू नहीं गाना है गीत तू भी गाई दे।
0: शांति ये मिये मिंजे ता ही लगा दा पी लौंगे तू गुआए आई कराला कन्ने तोपा दी तू टप्पर में लोंगे गुआई आई कराला की तोप दी टपरू में क्या नी चंपा
1: मेरे कन्ने कन्ने दिखिया तेरा सुर भी निकली पिया
0: मेरा तो मन कर रहा तुहां दी दूनी दी चिब्बा में त्रीड़ी लिया क्या क्या बोली आ रही है मिये तुसा
1: खरा खरा ता गाया मिये गीत गाई ने सुनाई था पाउहाड़ा ठीक है भी हंजो पता लगी गया और तू दस ओया क्या है
0: बड़ा जल्ब मिये चंपा मंजे तू हां दुन्नी दा भी बड़ा भरी जल्ब है मेरी किस्मत च भी सुखी नहीं है तो पाए तू बैठ के ए ले इसा फाइल तू दिख इसा तू दिख इस ट्रंक च मैं भी दिखी बैठी है मिये ए तीन चार फाइलन मिये इस च तोपा आई नहीं मिला दस है बड़ बड़ जरूरी है क्या तोपा दी शांति ये तू दसवीं दी संद उम्मीद दसवीं दी संद बारहवीं दी संद हुन कतां लैनियां लगी हो मेरी नौकरी कराला ते करे करे ते कराला ओ रमी सै गुआचे जलिए ना नी ओ तो तोपे तू मिली पोंगा तो दस कि मैं इस तो मी चंप तू क्या है करा दी उस ट्रंके तू संभाल
1: ओ मैं संभाले मी इदे के इस ट्रंके विच ते मी ओ एल्बम निकली तेरे ब्याह दी ए देखो
0: ओ मी हाय मैं मेरे ब्याह दी एल्बम मी है कितनी शैल है चल चल बा पजा बेनी कुर्सियां पर दिखाना
1: हां बेनी आ दिख दी ना एल्बम शांति ने कर तू ठंडा लेने आ मी ए सांजो ठंडा पिया पकोड़ू के दुकान ते जा लेने आ आ ताल तक ना एल्बम दिख दियां तोप दियां ना क्या गुआचिया
0: त मी एल्बम दिखणा नहीं सदी मैं तो हां
1: दिख मी ए शांति पुरानी यादा ताजा कर लेनी है ना कने ना तू दिमागे ठंडे रख कने दिमाग ठंडा होगा ना तो हर चीज मिली आंदी कने आईया ता ना दो जनियां तेरी हेल्प करना कने तू सांजो जा ठंडा लेने आ
0: तोपने ते तमिये भगवान भी मिली आंदा तेरी चीजें भी तोपी गई यहां जा जा तू मिये में समान ने तो बड़े संभाली के रख दी है इन फाइल न छुपाई के पर फाइल उड़ खाली पता नहीं कड्डी कड्डी समान कुथू बुजड़ा लाए मैं भी ਇੰਨੀ ਮਿਲਾ ਤੇ ਮੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੰਡਾ ਕਰਦੀ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਕੌੜੂਏ ਹਾਲ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੈ
1: ਐਲਬਮਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਦੇਖ ਓ ਮਿਓ
0: ਚੱਲ ਚੱਲ
1: ਇਹ ਦੇਖ ਓ ਕੇਸਰੋ
0: ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ
1: ਓ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਸੌਗੀ ਦੇਖ ਆਹ ਦੋ ਜਣੀਆਂ कलीरे बनाना बैठी हूँ मैं, वो कितना बड़ा कलीरा कलियर बनाया है मैं, बड़ा भारी गरिया गोला कने चार और ठूठियां लाई हैं सौगी मिये, दिख कदे छैल कलीरा बनाया है मैं।
2: ए दिख मेरे दिख तू, दिया बांका पूरा कोड़ियां दा कलीरा हा, दिख भला सारा कोड़ियां ने जड़े हैं मिये, मेरी ये कटिंग दिख तू कने।
1: आए हाय हीरो होनी लग गई तू कने शांति मिये दे छैल दिख तगड़ी तगड़ी होंदी ही
2: मिये ना? तो शांति दी बीन बजी हो आ दिख भला इस हाँ। वाता मिये टी नहीं बनी ही हुण
1: और क्या आ?
2: बड़े कम्मे च भी कुड़ियां नहीं देनियां आ परे भी फिंडवी पापी ये सकला दिखी के ही मरी हो
1: हाँ इसी एल्बम में यही था मिये दो ही फोटो है ना दिखता सही हाँ सोचे मते होंगे फोटो
2: बड़ी छाल फोटो आई है ना ये उन तटड़ी चली गया सा है ना
1: तू टलिया कर मिंजो के ना गा ना बच्ची निंदर आंदी अच्छी मैं तो खरी है नौ पे नौ हाँ इन्हें मत गला कर
2: तो बेलिया रहना तो अच्छी है रहना गा दिख तू गा फोटो दिख तू
1: क्या दिखने उन रना दे ओ केसरो ओ केसरो ओ दिख दिख दिख ये दिखो ये इस ट्रंक के बीच ना शांति दे बैंक की कॉपी भी मिली
2: दस दस
1: आहो ए ए देख ए ए कॉपी 1,00,000 रुपया ओ शांति ता मिये लाख पात्री है
2: गा दिख तू पता नहीं कुछ साले दा पेज कड़िया ए देखो गा
1: इसी साले दा मिये ये गोवा करने बेची बेची ने दूध बेची बेची के मिये 2-3 लाख ओयो इसा दे
2: ओ मेरे भगवान ए देखो तू इसा यो दिले च कुंडियां मारी के बैंदी कदी नहीं गलांदी कि मिंजो लितने पैसे ने कि थोड़े थोड़े तो हां भी लिया कम तम पोए ता हाई दुन्नी सद्दी लेंदी आज जेड़ा गवाचे दीदी के ना तिहाड़ी देनी है चल परा तू ये मिंजो ता मैं ता गला दी कदैड़ी होंगे तने पैसे रखी सही है कापी है विश्वास टूटी आना नहीं ता इसा दा फोग ट्रंक के अंदर
1: ओ ठंडा लेने कहनी आवा दी क्या गवाचे तिहादा

0: चंपा कने केसरो मिलला कुछ
1: कुछ नहीं मिलया शांति पर दस ते गलाया क्या हंज तोपने हो
0: ओ मी मैं ते गलाया नहीं ले मी दिमाग के ठंडे करा इले ठंडा ले आई मैं बढ़िया बोतल बड्डी ले केसरो पीस यू पी हो एक और गल याद आई मी हाँ। इस तो इस ठंडे पिया ना हाँ। कने मैं रात की कुल्फी लाई मी फ्रिज च फेंडू स्कूल लेते आई के खांदा ना मैं लेउंदी भी तांजो से भी लेउंदी
1: हां नेकी कने पूछ पूछ छोड़ कर
2: ले ले, ले, ले दे मेरे गिलास से दे तू
1: ले तू पी ठंडा ए है तेरा गिलास
0: लाई जो ते मैं फ्रिज ते खोल दी भले इस ए कुल्फी जम्मी गई है इस कड्डी लेंदी है मैं आ इने खवांदी ना तारीफ करनी मेरी शांति है क्या कुल्फी बनाई है ओ ए के पिया कबरे हट के आऊंगा ए ओ ई ते चंपा केसरो चंपा पैथो ए दिख मिए ए तो पड़ी ही मैं कुथू मिले मिए दिख फ्रिजे दे कबरे हट रखे मिए कद मैं कुथू तो पिया दी वैसे सोगी बड़ी मिए मैं
1: जो बोल दे हेल्प करना दिख हा दो जनिया आईया ताई मिले ना तीजो कार्ड
2: आहा बड़ी सुबन मिये तेरे वास्ती कुछ भी गुआचे ना ताहा सदी लिया कर तू
0: हाँ मी दिख बड़े शुभ पैर मी बड़े खरिया पुड़िया तो हम इंजो मिली है मिये नी तो फिंडू दे पापे तो सिंजाई के मेरा बड़ा भरी दिमाग खाना है ये दिख मिले ने ए
1: मिले क्या थी जो दस तो सही
0: ए दिख
1: ओ ए ए वोटर कार्ड ए गुआचे हाँ
0: और क्या इस बात जी काम थोड़ी ना होना बड़ा भरी जरूरी है मैं पहले नहीं बोले इस बात जी गुजारा नहीं इस बगैर की जाना
1: दिख ए गुआचे है तिहर ए ए वोटर कार्ड
2: कने ना तो इं नी लिया ही जनता सोरे का ना आंदा ही सही प्यागना ला पाया मेरा सह गुआचिया
1: हाँ मिये इसा दे सोरे का ना आंदा ता ही निकला दही है सवेरे दी
0: तू दस चंपा ऐसा नहीं रे ख्याल दस क्या बोल दे मेरे सोरे क्या बोल दे है
1: हाँ मी केसरो इसा दे सोरे का ना आंदा मैं तो ले सकती ना इसा दे सोरे का ना मिये सारा ग्रां बोटी बोटी बोलदा हा ता ही मिये वोटर कार्ड नहीं बोलिया

0: था। हाँ देखो ये कितने संस्कारी है।
1: इसी संस्कार नहीं गलांदे, इदी गलांदे पढ़े लिखे बेवकूफ। साड़ा दिन बनाई ता इन्ना जर के ना ले ही दिंदी।
2: पढ़ी लिखी ता मैं ताई तमिंजल सारी जानकारी है। दिखना टाइम में दा टोपी रखे मैं।

0: श्रोताओं, ये नाटक तुहां तक पुजाया कि आशा करते हैं पंच जी पसंद भी आया होना, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और हूँ हाँ लैनी है सारे तो इजाजत, पर जाने तो पहले दस दिए कि कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रहा बिपिन कुमार और दा, कने प्रस्तुत करता जतिंद्र पाल सिंह और, तो हूँ टियाले के सदस्य पंच जो
0: कने लोग

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मोजांग राइंदियां, ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। शाम के 7 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से। पहले हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 1,52,00,000 रुपए के आवंटन के साथ 10 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। इसमें किसानों के लिए कई बड़े फैसले शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कपास उत्पादकता मिशन कपास क्रांति को स्वीकृति दी है।
2: 5,659 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, जिसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट रिसर्च, दूसरा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज को बढ़ाना और तीसरा न्यू एज फाइबर्स के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि गन्ना सीजन वर्ष 2026-27 के लिए उचित और लाभकारी मूल्य FPR को भी मंजूरी दी गई है। इससे करीब 32,00,000 किसानों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 नई सेमीकंडक्टर इकाई को भी मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। केरलम में कांग्रेस पार्टी में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। विधायक दल की आधिकारिक बैठक के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। पार्टी बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगी। पुदुचेरी में मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज पार्टी विधायकों की बैठक में उन्हें चुना गया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया बैठक में उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि चाहे वो इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, NDA के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह में पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा और देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लेम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली सातवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: किसान कने बागवान भाइयों भैनों का अपना कार्यक्रम किसान वाणी लई ने टियाले पर पुजी आ तुहांदा लोका पाओ कने जितने भी किसान बागवान इस वेले कार्यक्रम जो सुना देन उन्हां सारयां दा अपने टियाले पर स्वागत करदे ने। कने किसान साथियो अज पंच होरां जिहड़ां सै टियाले पर पुजी होन तां पंच जी तुहां वी राम राम।
1: राम राम लोका पाओ कने कार्यक्रम सुना करदे सारयां स्रोतियां जो भी इक बारी फिर ते टियाले ते राम राम।
0: होइए कणकां कम्मां ते वेले,
1: कणकां कम्मां ते कुत्थू होए वेले, थोड़ी जी पहले जिहड़ी कटी होई ने सै तां लई गाई ना।
0: अच्छा,
1: उस ते बाद दो तीन पट्टियां होर बढ़ियां सै, हुण बारिश जिहड़ी से हर रोज होई आ करदी तां हुण खलारा पिया थोड़ा।
0: हां ना, इह तां चिंता है ना, मैं भी चार पंज पट्टियां बढ़ियां तां सै तियां ही पईयां ने, है ना।
1: हां,
0: कि अंबर देखा इस हिसाबे बरा दा जमा जमियां लगा था भाई, बरसात लगी पई फिरते, है ना।
1: बिल्कुल, चल भी इं गड़ाके हो तो दिल जैसे डरा करता, और इस बिच जैसे डरने की भी जी जायज है, क्योंकि पिछले छे महीने की मेहनत है, और इस बिच हाँ जो जैसे थोड़ा मौसम का मिजाज दिखी के जेड़े से काम कार करना पौने, है ना
0: जी। पक्की गल तो हाँ पंच जी गलाई गए कि दिखा छी महीने की मेहनत होंगी, कहना अंबर जरा जालू बरखा चाहिए होंगे तालू आदि नहीं ना, है ना। कहना हूं दिखा अंबर कि भरा था, हूं बोला दे गां भी हली बरखा ही दसा दे
1: जी जी,
0: है ना। तो धुप लगी तां तां दी कणकां सै सुक गईयां, कने नहीं तां फिर लुंगी नहीं पौन कुत्के।
1: हाँ, हो सकदा, पर अहां जिहड़े सै कने कने मौसम ने तां लड़ी नहीं सकदे, पर थोड़ा एहतियात जिहड़ी सै बरती सकदे, और अहां जिहड़ी सै तैयारियां रखणियां अपनी पूरियां, जियां कि अहां कणकां जो जिहड़ा सै सिजणा नहीं देना, सां जल्लू पता लगदा कि मौसम खराब होआ करदा तां अहां ते जो जिहड़ा सै अच्छे सुके स्थान पर जिहड़े सै भंडारित करी सकदे, और टेंट वगैरह जिहड़ा सै उड़ाई सकदे, है ना।
0: करी तां तां ही सकदे पंच भाई, जे अंबर थोड़ी जी धुप्प करे तां ही, है ना।
1: हाँ,
0: जिहड़ी बन्नी सड़ी होण ते सै सुकणा ही नहीं देआ दा,
1: नहीं नहीं सुकणा देना, बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलो अहां तां आशा करदे हन कि परमात्मा जिहड़ा सै दिखगा सारे पाहे अहां दे पाहे भी, है ना
1: जी जी।
0: कने गां आउणे वाले दिनां च जिहड़ा सै निंबल होंगे, कने अहां दी मुख्य फसल है कणक दी, कने हली बड़ी सारी अहां दे ऐसे क्षेत्र जिथे बड़िया कणक हाली रोकाइया पई, है ना।
1: बिल्कुल खड़िया न, और तिना जिहड़े सै आने वाले समय च तिना सै भी कटनी है ना
0: जी जी जी।
1: इस बिच कुल मिलाए के जिहड़े सै अहां दा कम जिहड़ा सै अजकल मशीनीकरण हुई है ना, जियां कि हां हुण थ्रेसिंग भी जिहड़ा सै ट्रैक्टर ने करा दे, कोई छोटियां मशीना हां साडे किसान भाईयां रखियां, है ना, कई जगह जित्थू कि ट्रैक्टर नहीं पुजदे न। कुल मिलाई के जेड़ा सा साड़ा खेती बाड़ी का कामकार जेड़ा इन्हें मशीना जेड़ा सा थोड़ा सुविधाजनक और आसान बनाई दिया है, तो इस चीज़ जो दिखते हुए जेड़ा सा अहाँ जो जेड़ा सा आने वाले समय च और आधुनिक तकनीक जेड़ी से अपनाना चाहिए, ताकि साड़ा जेड़ा कामकार करने जेड़ा तरीका सै भी आसान हुई है, कने सांझ जेड़ी जेड़ी कई बार आपदा हो करती है इन्हें भी अहाँ का बचाव जेड़ा हो सके, और मौसम की जेड़ी मार पो करती है इसते भी जेड़ा सा सांझा साड़ा जेड़ा जोखिम सै घट ਹੋਈ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਪੰਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸਾੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ, ਹੈ ਨਾ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਵਧਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੰਦੂਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਵਿਰਧੀ ਹੋਈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕਹੇ ਕਿ ਉੱਨਤ ਬੀਜ ਕਨੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 20 ਤੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਗਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਪੰਚ ਜੀ ਕਮੀ ਦਿਖਣੇ ਮਿਲਦੀ, ਕਹੇ ਕਿ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਉਤਨੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਤਨੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਨੇ ਸੈ ਖਾਦ ਕਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਕਨੇ ਕਨੇ ਸਮੇਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰਮ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਲੂ ਹਾਂ ਨਈ ਨਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਔਰ ਨਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਨੇ ਕਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼੍ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗੁਆਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
0: ਤਾਂ
1: ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੂ ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਟਿੱਲਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਪੇਕੜ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀਆਂ ਹਲਾ ਦਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਹਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲੂ ਮਿੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੀਮੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਂ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸ਼੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਕਨੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰਬੁਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਂ, ਇਸ ਕਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਕਨੇ ਸ਼੍ਰਮ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਚਤ ਹੋਆ ਦੀ, ਕਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਨੇ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਘਟਾ ਕਰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਕਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਉਹਦਾ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਟਪਕ ਸਿੰਚਾਈ ਬੋਲਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਰ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 60-70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ।
1: ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਤੀਹ ਕਨੇ ਵੀ ਫੁਹਾਰਾ ਵਿਧੀ ਕਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੰਚਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ अच्छी बढ़वार होंगी है।
0: बिल्कुल ठीक है ना, बेहतर बाजार का भाव भी मिला था कि देखा मोबाइल एप्स हो इंटरनेट के जरिए किसान घर बैठी नहीं मंडी के भाव तेने जानने मिलते कने इस कने बिचौलिए जड़े ठगी ले आते हैं उन्होंने पर भी निकेल कसी कने फसलों की जी सही कीमत है सह किसानों मिलना करती है ना। कने मिट्टी की उर्वरता की भी गल करिए आधुनिक तकनीक कने प्राकृतिक खेती के संतुलन कने पंच जी मिट्टी की सेहत बनी रही कने जिस कने जमीन लंबे समय तक जरा सह उपजाऊ रही है ना
1: जी जी।
0: तो अहां तो स्वागत ही करते हैं सारे किसान आधुनिक मशीन का क्योंकि इसने बड़े सारे लाभ जरा सह किसान ने हुआ करते हैं है ना।
1: हाँ जी।
0: तो हूँ जरा पंच जी ट्याले पर बेला ब्योकड़ा लगियाँ तो एक ब्योकड़ा का गीत जरा सुनाने का है ना
1: जरूर।

0: संझा दे बेला पंच जी अपने किसान साथियों एक प्यारा दिया मिठा दिया लोक गीत सुनाया कने आशा कर दे उन्हें पसंद भी आया होना है ना।
1: हाँ जी और
0: कार्यक्रम च हूँ गां बढ़ना हाँ कने बेला ओदा भेंट वार्ता दी अंक दी जानकारी सांझा करने दा है ना।
1: हाँ जी
0: कने वह सुनांदे न अपने किसान श्रोतें ये भेंट वार्ता दा अंक।
2: जैसे कि हमारे किसान भाई जानते हैं कि अगर कोई भी कार्य समूह में किया जाए तो उसमें जो है मुनाफा हो सकता है, उसमें ज्यादा जो है तरक्की हो सकती है, ज्यादा जो है सफल हो सकता है। आज हम स्वयं सहायता समूह क्या है और इससे जो है हम खास करके महिला किसान जो है अपना उत्थान कैसे कर सकती है इस संबंध में बात करेंगे। तो इस संबंध में जानकारी देने हेतु तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीतू शर्मा जो कि वैज्ञानिक हैं। तो डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में स्वागत है।
3: धन्यवाद जी।
2: तो सबसे पहले हमें और हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि स्वयं सहायता समूह जो है ये किस तरह से कार्य करता और आप इसका जो है गठन कैसे करते हैं।
3: देखिए स्वयं सहायता समूह जो है उसमें 15 से 20 महिलाएं जो हैं वो इकट्ठे होकर एक समूह बनाती हैं और हर महीने वो लोग एक निश्चित राशि तय करते हैं जो वो लोग हर महीने उसको इकट्ठा करेंगे। प्रति जो सदस्य है वो हर महीने उस पैसे को देगा और वो पैसा जब इकट्ठा होता रहता है तो वो उनकी एक राशि जमा पूंजी बन जाती है
2: जी।
3: अब जो मेन कॉन्सेप्ट स्वयं सहायता समूहों को लेकर के है वो ये है कि जो हमें एकदम से जरूरत पड़ती है पैसे की तो वो हमें या तो अपने रिश्तेदारों या किसी से ब्याज पर लेना पड़ता है। लेकिन अगर स्वयं सहायता समूह हम लोग बनाते हैं तो अपनी सहायता जो हम स्वयं बोल रहे हैं वो अपनी सहायता हम खुद करते हैं जो पैसा हम लोग अपने पास इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो एक समस्या रहती थी कि हमें पैसा एकदम से नहीं मिल पाता था वो हम अपने समूह से ऋण के तौर पर लेते हैं और वो जो ऋण जब हमने उसको अदायगी करनी है तो उसका ब्याज भी हम समूह के सदस्य मिलकर ही निश्चित करते हैं
2: जी। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितने से शुरू होनी चाहिए, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने होने चाहिए?
3: इसमें जो सदस्य हैं वे 15 से 20 ही होने चाहिए और ज्यादातर ये माना गया है कि जो महिलाओं का समूह है वो अलग बने और पुरुषों का समूह जो है वो अलग बने
2: जी।
3: और दूसरी बात इसमें जो मुख्य है वो ये है कि जो हम हर महीने पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो भी पूरा सदस्य के मेंबर्स जो हैं से जो है उनसे पूछ कर किया जाए, यानी कि हर महीने वो 10 रुपए देना चाहते हैं या 20 देना चाहते हैं या 100 भी दिए जाते हैं, लेकिन वो जो डिसाइड करना है वो सभी ग्रुप के मेंबर्स इकट्ठा होकर करें ताकि जो भी उनका आर्थिक स्तर है वो मिलता जुलता हो और वो आराम से उस पैसे को हर महीने दे पाए
2: जी। तो इसमें जो है कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए ताकि समूह का कार्य चलता रहे, जैसे कोई पैसे का रख रखाव करे, किसको कैसे जरूरत देनी है, इसमें प्रधान उप प्रधान वगैरह इस तरह का कार्य
3: जी? इसमें प्रधान भी होते हैं, उप प्रधान होते हैं और सचिव होते हैं या कैशियर जिसको ये लोग बोलते हैं
2: जी।
3: तो जो पैसे का लेन देन है हिसाब किताब वो इनको अपने रजिस्टर्स बनाने पड़ते हैं, हर महीने मीटिंग्स करनी पड़ती हैं, बैठक करनी पड़ती हैं जिसमें कि ये डिसाइड करते हैं कि पिछले महीने क्या कार्य किया गया और आगामी महीने में ये लोग क्या करने जा रहे हैं और जो कुछ भी इनकी बैठक होती है जो कुछ भी उसमें डिसाइड करते हैं डिस्कस करते हैं उसकी प्रोसीडिंग्स इनको उस रजिस्टर में निकालनी पड़ती हैं। अब जो पैसे की बात मैंने की थी कि हर महीने ये लोग पैसा इकट्ठा करते हैं तो सबसे जो एक इसकी लाभ है ग्रुप बनाने का वो ये है कि आप लोग बैंक में जाकर के अपने ग्रुप के नाम का एक खाता खुलवा सकते हैं
2: जी। पैसे की किसको ज्यादा जरूरत है ये ग्रुप निश्चित करता है कि किसको जो है पैसा दिया जाए
3: जी? इसमें तो जरूरत पे डिपेंड करता है कि किसको जरूरत पड़ रही है पैसे की, लेकिन ज्यादातर हम लोग महिलाओं को इस उसमें मोटिवेट करते हैं कि उस पैसे को जो वो ऋण के तौर पर ले रही है उसे अपनी जरूरतों के लिए तो ले, लेकिन साथ साथ जो मेन कॉन्सेप्ट है स्वयं सहायता समूहों का वो ये है कि वो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसे किसी कार्य में लगाएं। यानी कि आज की डेट में अगर ये लोग 10,000 इनके पास हैं तो कुछ ऐसा कार्य करें कि वो 10 से 20 या 50 या लाख रुपए तक उसको पहुंचा सके
2: जी। तो उसके लिए भी इस समूह में से पैसे निकाले
3: जी वो है तो उन्हीं का ही पैसा है, उन्हीं की जरूरतों के लिए है और उसे वो ले सकती हैं, लेना भी चाहिए। लेकिन जो हम एक आज जो हम किसानों की इनकम को डबल करने की बात कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि स्वयं सहायता समूहों के थ्रू जो महिलाएं हैं वो अपनी जो आय उनके पास आ रही है उसे दुगना कर सकती हैं,
2: ज्यादा ज्यादा बढ़ा
3: सकते हैं
2: जी। तो समूह जो है अच्छे तरीके से कार्य करे इसके लिए क्या क्या मापदंड होने चाहिए?
3: मापदंड तो यही है कि जो इन्हें हर महीने पैसा देना है वो रेगुलर रहे जो भी महिलाएं इसकी सदस्य हैं, क्योंकि मैक्सिमम ग्रुप्स में ये होता है कि औरतें या तो मीटिंग में ही नहीं आती हैं और या तो वो पैसे हर महीने प्रॉपर रेगुलरली नहीं देंगी, दो दो महीने या तीन तीन महीने इकट्ठा देते हैं। तो उसमें हम लोग यही सजेस्ट करते हैं जो ग्रुप लीडर्स हैं कि आप लोग कुछ फाइन रख दीजिए इसमें कि जिसने लेट दिया है उसको आप कुछ फाइन जब उस पे चार्ज करेंगे तो वो टाइमली दे देंगे
2: जी।
3: क्योंकि जब पैसा एक नहीं देता है और तो दूसरे भी थोड़े ढीले हो जाते हैं और उससे क्या है कि पैसा रेगुलरली
2: संस्था की जो है कुछ गड़बड़ा जाती है
3: जी, और उससे फिर ग्रुप्स जो है वो टूटने लगते हैं
2: जी। तो अगर किसानों का ग्रुप है तो उस परिस्थिति में जो है क्या क्या मापदंड होते हैं? यही मापदंड होते हैं
3: जी, यही मापदंड रहेंगे। लेकिन वही बात आ गई कि ये डिपेंड करता है कि आप आगे कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम लोग बोलते हैं कि यदि वो कोई एक्टिविटी शुरू करना चाहती हैं तो हम उनको अलग तरह के कार्य सजेस्ट करते हैं। अगर पुरुष किसान है तो उनके लिए अलग तरह के कार्य हो
2: जी। मसलन
3: जैसे महिलाएं हैं, मैं स्पेसिफिक तो नहीं करूंगी कि सिर्फ महिलाओं ने ही कार्य करना है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी कांगड़ा की जलवायु अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फल और सब्जियां बहुतायत में उपलब्ध होती हैं और जब सीजन है तो उस टाइम सस्ती भी रहती हैं। तो हम लोग ये औरतों को सजेस्ट करते हैं कि ऐसे में यदि वो ग्रुप में फल सब्जी परिरक्षण का कार्य करें, यानी कि अचार चटनियां मुरब्बे या फिर आपके अनाज हैं उनको सुखा करके सीरा बड़ियां सेवियां इस तरह के उत्पाद बना करके अगर वो मार्केट में लेके जाती हैं और उन्हें बेचती हैं तो वो जो आय दुगुनी करने की हम बात कर रहे थे वो पॉसिबल है। क्योंकि मान लीजिए कोई किसान है वो सिर्फ गोभी लगा रहा है तो जब वो बेचते हैं गोभी तो वो 30-40 बहुत कम मूल्य मिलता है जितनी वो मेहनत है, लेकिन यदि वो उस गोभी का अचार बना करके बेच देते हैं तो वो जो उन्हें मुनाफा हो रहा है वो एकदम से बढ़ जाता है
2: जी।
3: महिलाओं का काम ये हो सकता है इसमें कि जो बनाने वाला कार्य है अचार बनाने की बात करते हैं वो महिलाएं कर सकती हैं, लेकिन जब मार्केटिंग में लेके जाना है या ट्रांसपोर्टेशन वाली बात आती है वहां पर वो काम हम पुरुषों को सौंप सकते हैं।
2: तो डॉक्टर साहब ये जो कार्य है ये सुचारू रूप से चलता रहे, इसमें जो है लोगों की भागीदारी अच्छे से हो और उनका कार्य अच्छा चलता रहे तो इसके लिए प्रशिक्षण भी आपका विभाग देता है
3: जी। हम जैसे मैंने बताया कि हम सिर्फ सलाह नहीं दे रहे हैं किसानों को कि आप लोग ये काम करिए, हम उनके लिए प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करते हैं और मैं परिरक्षण की बात कर रही हूँ या इसे हम मूल्यवर्धन भी कहते हैं, तो इस तरीके के परीक्षण जो है वो हम डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से मतलब उनको हम मतलब वो अगर उन्हें चटनी बनाना के बता रहे हैं तो सिर्फ थ्योरी नहीं उन्हें प्रैक्टिकली वो चीज करके सिखाते हैं और ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हमारे केंद्र में भी दी जाती हैं।
2: यानी कि सभी कृषि विज्ञान केंद्र चंबा ऊना और आपके जो कांगड़ा में जो
3: जी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनका ये मैंडेट है कि हमारे को प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना है चाहे वो केंद्र पर हो या वो केंद्र के बाहर रहे। तो ये जो ट्रेनिंग्स हम ग्रुप्स को दे रहे हैं उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप भी हम उनके साथ रखते हैं कि मतलब वो इसका कोई यूनिट चलाना चाहते हैं तो उसमें भी हम पूरा सहयोग करते हैं।
2: और साथ में जो है कुछ अगर उन्होंने पदार्थ बनाए हैं तो उसमें बेचने के लिए भी आपका विभाग कुछ करता है, उनको मदद करता कुछ?
3: उनकी मदद इस तरीके से की जा रही है जैसे कि हम लोगों के कोई किसान मेले होते हैं
2: जी।
3: तो जितने भी ग्रुप्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हम उनके जो भी उत्पाद वो लोग बना रही हैं उनको वहाँ एग्जिबिट भी करते हैं प्लस उनकी सेल भी की जाती है। इसके अलावा एक्सपोजर विजिट्स करवाए जाते हैं, भ्रमण कराए जाते हैं ताकि और जिलों में जो इस तरीके की औरतें काम कर रही हैं उनका क्या तरीका है, वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो एक्सपोजर विजिट्स भी हम उनको करवा रहे हैं। प्लस जो आपके ये कुल्लू का दशहरा है या चंबा में मिंजर मेला है यहाँ पर भी हमारे जो ग्रुप्स हैं वो लेकर के सामान अपना लेकर के जाते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे पब्लिसिटी तो उनकी हो रही है। तो कुछ ग्रुप्स जो है वो तो घर से भी बेच रही है, मतलब अब इतना नाम हो रहा है कि लोग उनके पास खुद पहुंच रहे हैं,
2: उनका नाम ही चल रहा है
3: जी।
2: तो बहुत अच्छी बात है जी, अगर हमारे किसान भाई और महिला किसान जो हैं इस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है कि उनकी आमदनी में जो है इजाफा हो रहा है। तो मेलों में जो है जैसे कई बार ये देखा गया है कि सिर्फ एक स्टॉल मिलता है, महिला किसान या किसान जो है बहुत होते हैं, उस परिस्थिति में उनको माल बेचने में काफी असुविधा भी होती है, हमने कई मेलों में देखा है।
3: असुविधा तो है लेकिन हमारा मोटिवेशन ये उनको हमेशा रहता है कि सिर्फ हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना
2: रहें,
3: क्योंकि हम उनको राह दिखा रहे हैं। एक बार हम उनको राह दिखा रहे हैं आगे उनको अकेले ही चलना पड़ेगा। तो ये जो एक एक तरीका है जो हम उनको अपने साथ लेके जा रहे हैं वो उनको एक तरीका है कि इस रास्ते पे आपने चलना है, अगले साल उनको खुद ही वो काम करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि फॉलो अप है जो उनको बताना है कि अगर यूनिट एस्टेब्लिश हो गया है कोई उसके बाद जो मार्केटिंग करनी है, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, उसमें लेबल्स होने चाहिए, वो सारी चीजें जो है मतलब वो ए टू जेड हम उनको उनके साथ चल करके उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाते हैं
2: जी। डॉक्टर साहब एक बात रहेगी, जो आप प्रशिक्षण देते हैं कितने दिनों का होता है, जैसे अचार बनाने का चटनी बनाने का तो कितने दिनों का होता है
3: ये? देखिए जैसे मैंने बताया कि जो परिरक्षित पदार्थ हैं चाहे फल के हों या सब्जियों के बहुतायत में उपलब्ध हैं। आजकल आप मार्केट में जाएंगे आपको जैम जेली कुकीज, अचार, चटनियां, मुरब्बे, कैंडीज, मार्मलेड्स, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है। तो जब आप मार्केट में उतर रहे हैं तो आप सिर्फ एक उत्पाद के साथ नहीं जा सकते हैं। तो अगर हमें लगता है कि यूनिट शुरू करना है तो ये सारे उत्पाद हमें सीखने पड़ेंगे और हमें बनाने भी आने चाहिए। तो ट्रेनिंग जो है वो डिपेंड करता है, कई बार हम 5 दिन की भी रखते हैं, 7 दिन की भी रखते हैं, लेकिन ये है कि सिर्फ उस ट्रेनिंग पे ही नहीं खत्म करना पड़ता है, आगे इन जो क्योंकि खाने की चीजें हैं तो इसमें परफेक्टनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाकर के ये खाने के काम में आएंगी। तो
2: पदार्थ की अगर उत्पाद का जो है क्वालिटी होगी उसमें तभी जो है उसकी मांग होगी, अगर उसमें जो है कुछ गुणवत्ता जो है नीचे स्तर की होगी तो उस परिस्थिति में जो है कोई उसको लेगा नहीं। जी, तो उसके लिए जो है कैसे आपके पास इनरोल करवा सकता है, कैसे आपसे संपर्क साध सकता है?
3: वो अपने जैसे ग्रुप्स की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप के जो प्रधान हैं वो एक हमें एप्लीकेशन लिख करके हमारे केंद्र में दे सकते हैं।
2: तो उसमें जो जब भी आपको
3: ऑर्गेनाइज करते हैं हम, तो हम उनको कॉल कर लेते हैं, उसमें वो अपना पूरा पता लिखेंगे, किस विषय पर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, प्लस अपने कॉन्टेक्ट नंबर।
2: जी, तो इसी तरह से अगर जो है कोई पुरुष किसान जो है कोई उत्पाद बनाना चाहता है या फसल विविधीकरण की तरफ अपने कदम आजमाना चाहता है, तो उस परिस्थिति में जो है उसका समूह जो है उसकी कैसे मदद करते हैं आप?
3: ये ट्रेनिंग मतलब ऐसा है कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो विभिन्न जो हमारे विषय हैं उन्हें पर ट्रेनिंग्स देते हैं। तो आप फसल विविधीकरण की बात कर रहे हैं या सॉइल टेस्टिंग की हम बात करते हैं या केंचुआ या मशरूम खून उत्पादन की बात कर रहे हैं, तो वो इसी तरह से अपनी एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे केंद्र पर दे सकते हैं। तो उसके उपरांत हम देख लेते हैं कि जब जब ट्रेनिंग्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो या तो हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं या कई बार विभाग वाले भी बुलाते हैं हमारे थ्रू, तो हम वैसे भी ट्रेनिंग्स जो हैं वो उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके दे देते हैं।
2: जी, अक्सर ये होता है कि खुम्ब की खेती में जो है उसकी जो कंपोस्ट बनानी होती है आम आदमी नहीं कर सकता है, एक जो किसान है वो उसके लिए बस की बात भी नहीं है, तो उसकी कंपोस्ट दिलाने में भी मदद करते हैं, उसको भी सिखाते हैं आपकी कैसे बनाई जाए इसकी?
3: इसकी ट्रेनिंग जो बटन मशरूम की है वो हमारे जो यूनिवर्सिटी है चौधरी सरवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, उसकी ट्रेनिंग वहां पर होती है। केंद्र के माध्यम से भी हम जो है डिंगरी मशरूम उसकी ट्रेनिंग जो फार्मर्स को 5 दिन की या 3 दिन की जो है वो हम उनको उपलब्ध करवाते हैं।
2: जी, अगर हमारा किसान भाई जो है इस तरह से सीख लेता है और साथ में जो है सही जगह पे अपना उत्पाद बेचता है तो उसको जो अच्छी आमदनी हो सकती है।
3: जी,
2: तो अभी तक आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा में?
3: देखिए, ग्रुप्स तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो ग्रुप्स बना रही हैं, जैसे कृषि विभाग भी बना रहा है,
2: आत्मा परियोजना
3: भी बना रही है, जाइका प्रोजेक्ट आया है जापान का, उसके अंतर्गत भी बन रहे हैं और हम लोग भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग उस राह पे चल रहे हैं थोड़ा सा कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी बन चुके हैं एक तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसमें ये प्रॉब्लम है कि ग्रुप्स तो बहुत सालों से बने हुए हैं लेकिन जो उसका उद्देश्य है वो महिलाओं को ज्ञात नहीं, वो लोग सिर्फ आंतरिक ऋण तक ही सीमित हैं, और जो मैंने शुरू में कहा कि उनको इनकम जनरेट करनी है, आय उपार्जन करना है, उससे वो अनभिज्ञ है अभी तक। तो हम ये उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं कि जो ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए, उनका फॉलो अप हो, उनको मार्केटिंग तक लेके जाए और फिर वो उस माध्यम से
2: सफलता की ऊंचाई जो है छूती रहे। जी, सब आपने स्वयं सहायता समूह के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, किसान साथियों, भेंट वार्ता दे इस अंक के बाद कार्यक्रम च गां बदना हां कने अहां बाल पंच जी कांगड़ा सब्जी मंडी दे थोक मोल भाव भी पुजिए है ना
1: जी।
0: ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਲੂ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਲੂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹੇ ਅੱਜ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 18-22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਟਮਾਟਰੇ ਦਾ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜ ਜੀ ਸੈ ਅੱਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਿਹਾ 14-18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 100-110, ਅਦਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਰਕ 80-90, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ 14-16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਅਰਬੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈ 40-50, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਖੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 10-15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਰਿਹਾ ਮੰਡੀਏ 'ਚ, ਮਟਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 55-60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ 22-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈ 8-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬੈਂਗਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕੱਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਮੰਡੀਏ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 10-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਮੂਲੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਟੀਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਉਹ 35-40, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 25-30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਸੈ 35-40, ਕਹਿੰਦੇ ਧਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈ 30-35, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ 30-35, ਇਹ ਵੀ ਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਕਿਆ ਭਾਅ ਰਿਹਾ ਅੱਜ 15-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਸ਼ ਬੀਨ ਵੀ ਪੰਚ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈ ਅੱਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹੀ ਤੁਹਾਂ ਦੀ 35-40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਗਾਜਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈ 20-25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, मशरूम की गल करिए किसान साथी तो मशरूम जो जो भाव मिला अज मंडी च सै 160 ते 170 रुपए
1: जी।
0: कन्नै हुण फलां की गल करिए
1: जी फलों से सब तो पहले गल करिए सेब 120 ते 150 रुपए प्रति किलो, केला 40 ते 50, अनार 120 ते 150, अनानास 40 ते 50 रुपए, अमरूद 80 ते 90 रुपए प्रति किलो, मौसमी 60 ते 70, पपीता 40 ते 50, संतरा 100 ते 110 रुपए प्रति किलो, खरबूजा 25 ते 40, तरबूज 14 ते 18 रुपए, अंगूर 120 ते 130 रुपए प्रति किलो। गल करिए अंब की तो 70 ते 80 रुपए प्रति किलो, अंब जड़ा सै तोता किस्म का 60 ते 70 रुपए, नींबू 130 ते 140, कीवी जड़ा सै पर पीस 30 ते 35 रुपए, और माल्टा जड़ा सै 130 ते 140 रुपए जड़ा सै प्रति किलो दे हिसाबे ने कांगड़ा सब्जी मंडी अज रहे हैं। तो यह तो थे कांगड़ा सब्जी मंडी दे अज दे थोक भाव। और इसके बाद गल करिए मौसम दी, तो दिखा तो हाँ दो तीन दिन अगले भी जड़े से बोला दे कि मौसम खराब रहने की संभावना है, और अहाँ जड़े से अपने खेतीबाड़ी दे काम कार जड़े से मौसम दा जड़ा मिजाज दिखी कि इस हिसाब ही जड़े से करने है ना
0: जी। तो ये बाद फिरी ते चलते हैं कने ट्याले पर लगाते हैं एक रौनक, कने सुनते हैं प्यारा दे लोक गीत
1: जी।

0: किसान साथियों, इसी प्यारे दे मिठे दे लोक गीत कन्ने अहां दा जाने दा बेला भी होआ दा कन्ने फिरी कुछ दिन इसी ट्याले पर तुहाने मिलना होना है। ताली तक तुहां सुनदे रहे आकाशवाणी धर्मशाला उन अपने लोके वाऊ
1: कन्ने पंच जो दिया अनुमति।
0: अच्छा जी, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 7:42 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतज़ार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों की समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों के अध्ययन पर दिया बल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देहरादून मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को हर क्षेत्र में चुनौतियों को विकास के तौर पर देखने की दी सलाह। राज्यसभा सांसद डॉ. सिकंदर कुमार ने कन्या विद्यालय नादौन को बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विलय को तुरंत रद्द करने का सरकार से किया आग्रह। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, 6 मई से मौसम में सुधार के आसार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सचिव आशीष सिंघमार के नेतृत्व में एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। ये समिति इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में इस इकाई की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करेगी ताकि इसका प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मेडिकल कॉलेजों में नैदानिक सेवाओं के दृष्टिगत मरीजों के लिए प्रतीक्षा अवधि को शून्य करने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग को सुझाव देने को कहा। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के पीठासीन अधिकारियों की समिति की बैठक आज जयपुर में आयोजित की गई। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस बैठक में भाग लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समिति प्रणाली लोकतंत्र में मिनी सदन की भूमिका निभाती है, जहां विस्तृत विचार विमर्श और सूक्ष्म परीक्षण संभव होता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये प्रणाली किसी भी लोकतांत्रिक विधायिका का अभिन्न अंग है और ये संसद और विधानमंडलों के कार्यों को अधिक प्रभावी व उत्तरदायी बनाती है। कुलदीप सिंह पठानिया ने इस दौरान कई सुझाव भी दिए और कहा कि समितियों की सिफारिशों को अधिक प्रभावी व बाध्यकारी स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण कार्यशालाएं और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों का अध्ययन करवाने पर बल दिया, जिससे समिति की कार्यक्षमता बढ़ेगी। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से आज लोकभवन में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के कैडेट्स ने भेंट की। इस दौरान राज्यपाल ने सशस्त्र बलों के लिए युवाओं को तैयार करने में आरआईएमसी की उत्कृष्ट भूमिका की सराहना की। उन्होंने राष्ट्र के लिए अनुशासित, एकाग्र और देशभक्त अधिकारियों के निर्माण में संस्थान के योगदान की सराहना की। उन्होंने कैडेट्स को हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने और चुनौतियों को विकास के अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कैडेट्स को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित किया। राज्यपाल ने आधुनिक दुनिया की बदलती आवश्यकताओं का उल्लेख करते हुए कैडेट्स को जिज्ञासु, बौद्धिक रूप से सजग और निरंतर सीखते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को संसद की 543 सीटों के आधार पर लागू करने की केंद्र से मांग की है। आज शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि

0: महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए कांग्रेस प्रधानमंत्री को 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज महिला कांग्रेस ने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू कर दिया है।
1: महिला आरक्षण कानून पास है, लागू का दबाव है, लेकिन ये भाजपा सरकार को झुकाने के लिए हमें मालूम है इस आधी आबादी को सड़कों पर आकर चलो संसद के नारे के साथ हम जुलाई के मानसून सत्र में 10 लाख बहनों के बीच में हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी के नाम उनके पते पर 10 लाख महिलाएं पोस्ट कार्ड जुलाई सत्र से पहले पहुंचाएंगी।
0: अलका लांबा ने कहा कि महिला कांग्रेस हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर टैलेंट हंट कर महिलाओं को चुनाव के लिए तैयार करेगी। प्रदेश भाजपा सचिव वंदना योगी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण, परिसीमन और जनगणना जैसे गंभीर विषयों पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संविधान संशोधन और परिसीमन के बाद दक्षिण भारत की राजनीतिक शक्ति कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। वंदना योगी ने कहा कि कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत और न ही ठोस मुद्दे हैं, इसलिए वो जनता को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसा राजनीतिक संगठन है जो संगठनात्मक स्तर पर भी महिलाओं को 33% से अधिक भागीदारी देता है। जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वंदना योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है कि आगामी जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल होगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने नादौन के सरकारी कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के साथ विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय पर कड़ा विरोध जताया है। नादौन क्षेत्र के आम लोगों और अभिभावकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय में आज डॉक्टर सिकंदर से भेंट कर इस फैसले पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। सिकंदर कुमार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विलय को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस कन्या विद्यालय में लगभग 500 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और सरकार का ये कदम क्षेत्र की बेटियों की शिक्षा और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जनहित में इस निर्णय को वापस नहीं लिया तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन करेगी। विश्व संवाद केंद्र द्वारा आज शिमला में देवर्षि नारद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष तौर पर पत्रकारों के लिए आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय शिमला के सहायक निदेशक संजीव शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष राजेश बंसल ने बताया कि कार्यक्रम में पत्रकारों के समक्ष आने वाली चुनौतियों और इसका समाधान पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान चर्चा में सामने आया कि कुछ फिल्मों में नारद जी की गलत छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की गई, जिसे आज बदलने की आवश्यकता है।
2: उद्देश्य हमारा यही है कि जो पत्रकारिता, जो संवाद नारद जी ने अपने समय में किया, आज के पत्रकार भी उसी लाइन पर चलें और सच्ची पत्रकारिता को जो है अपनाएं।
0: इस अवसर पर विभिन्न समाचार पत्रों के संपादक, संवाददाता, ब्यूरो प्रमुख व मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद रहे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज दोपहर बाद से वर्षा हुई। पिछले तीन दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और मई महीने में भी लोगों को सर्दी का

0: मई से लेकर 9 मई तक जो हमारे जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, यहाँ पे मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। हालांकि जो हमारे मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है जिसमें विशेष डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, इसके जो आसपास क्षेत्र है वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में उसमें मतलब एक स्थानों में 6 मई से लेकर 9 मई तक हल्की बारिश हो सकती है। 7 मई से लेकर 9 मई तक प्रदेश में कोई अलर्ट नहीं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के तहत जिला परिषद चुनावों के लिए समर्थित उम्मीदवारों की विस्तृत व संयुक्त सूची जारी कर दी है। प्रदेश चुनाव संयोजक विपिन सिंह परमार ने मंडल, जिला व प्रदेश स्तर पर व्यापक विचार विमर्श और संगठनात्मक मंथन के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए महिलाओं, युवाओं और अनुभवी कार्यकर्ताओं को उचित अवसर प्रदान किया गया है। प्रदेश पुलिस ने अपनी नागरिक हितैषी वॉच एंड पेट्रोल पहल को शिमला के मॉल रोड से आगे बढ़ाते हुए मनाली, सोलन और मैक्लोडगंज सहित अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों तक सफलतापूर्वक विस्तारित किया है। पुलिस विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि आरंभ में मॉल रोड पर पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाने, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यटकों की सहायता के उद्देश्य से शुरू की गई ये पहल अब सेवा, सुलभता और जन विश्वास पर आधारित आधुनिक पुलिस का एक प्रभावी मॉडल बनकर उभरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आईजीएमसी शिमला में एकीकृत मातृ व शिशु अस्पताल स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने के अधिकारियों को दिए निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों की समिति के सदस्यों को नियमित प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अनुभवों के अध्ययन पर दिया बल। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देहरादून मिलिट्री कॉलेज के कैडेट्स को हर क्षेत्र में चुनौतियों को विकास के तौर पर देखने की दी सलाह। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कन्या विद्यालय नादौन को बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विलय को तुरंत रद्द करने का सरकार से किया आग्रह। और राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में वर्षा से तापमान में गिरावट, 6 मई से मौसम में सुधार के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान।

आकाशवाणी का यह धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

सबरस कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन की गाई इस गजल के साथ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग। मेरे

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं पंकज उदास की गाई ये गजल।

कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति जसविंदर नरूला की आवाज में ये पंजाबी गीत। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। रात्रि के 8:30 और 10 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीत।

फना फिल्म से ये देशभक्ति गीत महालक्ष्मी अय्यर व साथियों का गाया हुआ। संगीत दिया है जतिन ललित ने और बोल हैं प्रसून जोशी के।

अभी आप सुन रहे थे सोनिया आनंद का गाया ये देशभक्ति गीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं महेंद्र कपूर व साथियों का गाया ये देशभक्ति गीत क्रांति फिल्म से।

0: रुकना, कदम कदम पर मौत मिलेगी फिर भी तुम ना।
1: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार संध्या और 9 बजे News@9 रिले किए जाएंगे।
2: केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत ICC क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
3: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
3: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
2: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
3: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
3: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से

0: निसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वियम को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
3: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी के अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। NEC ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स EGR को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में 6ठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

जी हाँ, आवारा फिल्म से ये गीत आपने सुना, और आज हम आपको सुना रहे हैं उस सुनहरे दौर के गीत जहाँ एक आवाज़ थी दर्द, सादगी और सच्चाई से भरी हुई।

मुकेश जी का पूरा नाम था मुकेश चंद माथुर। उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ था। बचपन से ही उन्हें संगीत का शौक था, लेकिन परिवार में कोई संगीत से जुड़ा नहीं था। फिर भी उनके मन में संगीत के प्रति गहरी लगन थी।

मुकेश को असली पहचान मिली फिल्म आवारा के गीत आवारा हूं से। यह गीत आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उनकी आवाज़ में एक अनोखी सादगी और दर्द था जो सीधे दिल को छू जाता था। उन्होंने कई अमर गीत गाए और उनकी आवाज़ को राज कपूर की पहचान माना जाने लगा। कभी कभी फिल्म के लिए मुकेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया।

27 अगस्त 1976 को एक कार्यक्रम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पार्श्व गायक मुकेश का निधन हो गया। उनकी आवाज आज भी अमर है। जब भी कोई दिल को छू लेने वाला गीत हम सुनते हैं तो मुकेश जी की याद जरूर आती है। मुकेश जी ने अपने गीतों के माध्यम से भावनाओं को जिस तरह व्यक्त किया वह आज भी एक मिसाल है। उनकी सादगी, उनकी आवाज़ और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। कुछ आवाज़ें समय के साथ नहीं मिटती, मुकेश जी की आवाज़ उन्हीं में से एक है।

अभी आप सुन रहे थे कैरेक्टर में एक ही कलाकार, और एक ही कलाकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे थे मुकेश के गाए कुछ चुनिंदा गीत। ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए अब सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम धाम गीतांदी।

अभी आप सुन रहे थे शेर सिंह जरियाल का गाया ये लोकगीत। कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं अंजना रीता का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे परदे परदेसी का गाया ये लोकगीत कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं निम्मो चौधरी का गाया ये लोकगीत।

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम धाम गीतां दी अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं भुवनेश कुमार का गाया ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे पवन डोगरा का गाया ये लोक गीत कार्यक्रम में। अब हम शामिल कर रहे हैं वर्षा कटोच का गाया ये लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम धाम गीत दांडी। आइए अब सुनते हैं चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत।

अभी आप सुन रहे थे दाग फिल्म से ये गीत संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल थे साहिर लुधियानवी के और इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। मेरे जीवन साथी इस फिल्म में आइए सुनते हैं किशोर कुमार को।

ये संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। दो वक्त की रोटी इस फिल्म का गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने। चित्रपट संगीत, पुरानी फिल्मों से गीत, अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अपने रेडियो दोस्त रेनुमन कोटिया के साथ।

ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: सर फिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिमुनरेटिव एफआरपी प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स है देश में, उन सबके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कशगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1,130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपये मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the mission aligns with the government's 5F vision, farm to fibre, to factory, to fashion, to foreign. And focuses on enhancing cotton productivity. This project is worth 5,660 crore rupees and consists of three components. The first component is research. The second is enhancing production technologies. And the third is encouraging farmers towards new age fibers. This reflects the Prime Minister's 5F vision, creating fiber from the farm, moving from fiber to the factory, from factory to fashion, and maintaining the entire cotton supply chain from fashion to foreign shores. The Union Cabinet has also approved the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0. Under the scheme, a 100% credit guarantee will be provided for MSMEs, while a 90% guarantee will be extended to non-MSMEs and the airline sector. The Union Cabinet has also approved two more semiconductor projects under the India Semiconductor Mission. These include the country's first commercial mini micro LED display facility based on gallium nitride technology, along with a semiconductor packaging facility. Mr. Vaishnaw said the approved proposals will establish semiconductor manufacturing units in Gujarat with a cumulative investment of around 3,936 crore rupees. The Union Cabinet today approved a proposal to introduce the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 in Parliament. Mr. Vaishnaw said the bill seeks to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1956 to increase the sanctioned strength of judges in the Supreme Court by 4, from the present 33 to 37, excluding the Chief Justice of India. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, also approved three multi-tracking railway projects with a total cost of 23,437 crore rupees. The CCEA has approved the development of a state-of-the-art ship repair facility at Vadinar, Gujarat, marking a major expansion of the national ship repair ecosystem. Following the BJP's sweeping victory in the West Bengal Assembly elections, the new cabinet members are likely to be sworn in on the 9th of this month, the birth anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. In Tamil Nadu, actor turned politician C. Joseph Vijay's Tamilaga Vetri Kalagam TVK has emerged as the single largest party in the state, winning 108 seats. Following the party's strong electoral debut, newly elected TVK legislators have formally elected Mr. Vijay as their leader in legislative party meeting at the party headquarters in Panayur near Chennai. Meanwhile, outgoing Chief Minister M.K. Stalin has submitted his resignation to the governor, which has been accepted. The Election Commission has categorically dismissed as baseless and false the allegations made by Trinamool Congress candidate and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee regarding the vote counting in Bhabanipur Assembly constituency. In a statement issued by the District Election Officer of South Kolkata, it was clarified that the entire counting process was conducted strictly in line with the Commission's rules and regulations. Prime Minister Narendra Modi has strongly condemned the attacks on UAE's Fujairah that resulted in injuries to three Indian nationals. In a social media post, Mr. Modi stated that targeting civilians and infrastructure is unacceptable. He asserted that India stands in firm solidarity with the UAE and reiterates its support for peaceful resolution of all issues through dialogue and diplomacy. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today said that development cooperation remains a key pillar of the partnership between India and Jamaica. Addressing the media after his meeting with his Jamaican Foreign Minister Carmina Johnson-Smith and other cabinet members. India has retained its position as the top of the ICC Men's T20 ranking, showcasing their dominance in the cricket world. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है, FM बैंड